एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत सन 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि तदनुसार 29 मई सन 2026 है। इस समय सवेरे के 5:56 और 30 सेकंड हो रहे हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे प्रसेनजीत रॉय का सितारवा सिंह। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने को है, कुछ

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को ये तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार

0: देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदन वार।

कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुस्कान एक ऐसा उपहार है जिसे बिना कुछ खर्च किए भी किसी को खुशी दी जा सकती है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर झरोखा में। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 203। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार है शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 7वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। सुनिए इस कार्यक्रम का भाग 30। लेखन है मिलिंद सबनीस का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पृथ्वीराज कपूर पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए हेलो फरमाइश। संवादन है मंदाकिनी जोशी का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी

यादों की महफिल, 1 बजे सी तय करेंगे सुरीला सफर, 2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे आज सुनिए हेलो सहेली। हेलो सहेली कार्यक्रम में संवादन होगा चंचल वर्मा का, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 4 बजे पिटारा में सुनिए गीतों भरी कहानी, कहानी है रिश्ते, लेखन है विधि जैन का, संवादन है, संपादन है काजल भद्रगे का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। पर संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी, एक दिन का प्यार, लेखन है V.M. आनंद का, निर्देशन है सुदर्शन कुमार का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 9 बजे सुनिए आपके लिए, 9:30 पर आज के फनकार, कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता पंकज कपूर पर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 बजे सुनिए छाया गीत, आलेख और स्वर है ज्योति गौर का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

मर्म स्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा की जा रही है। कल आपने सुना था राग दरबारी, आज प्रस्तुत है राग भैरवी।
1: संगीत सरिता के श्रृंखला में आपका एक और बार स्वागत है। आजकल मैं बता रही हूँ हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल की कुछ कृतियाँ, जिनमें उत्तर और दक्षिण का संगम है। स्वाति तिरुनाल थे दक्षिण के केरला प्रांत के, और इन कृतियों को गाने की विधि कर्नाटक पद्धति से जुड़ी हुई है, लेकिन साहित्य है हिंदी में और राग हैं हिंदुस्तानी पद्धति के। मैं राग वृंदावनी सारंग, दरबारी और धनाश्री में कृतियाँ पेश कर चुकी हूँ, तो लीजिए आज सुनाती हूँ भैरवी राग में।

एक रचना। उससे पहले महाराजा स्वाति तिरुनाल के बारे में दो चार शब्द और भी कह दूं। स्वाति तिरुनाल और संत त्यागराजा मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते थे, सब समकालीन वाद्यकार थे। स्वाति तिरुनाल तिरुवांकूर प्रांत के महाराजा थे और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने शिष्य नहीं तैयार किए। महाराजा थे तो शिष्य नहीं ले सकते थे शायद, लेकिन उनकी रचनाएं उतनी ही श्रेष्ठ माने जाते हैं जितने त्रिमूर्ति वाद्यकारों का। कहा जाता है कि वे अपनी मातृभाषा मलयालम के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और फारसी में भी बहुत ही निपुण थे। एक पुस्तक है ग्रेट मास्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसमें स्वाति तिरुनाल का भी नाम शामिल किया गया है। उनके दक्षिणवासी होते हुए भी उन्होंने

अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और फारसी में भी बहुत ही निपुण थे। एक पुस्तक है ग्रेट मास्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, जिसमें स्वाति तिरनाल का भी नाम शामिल किया गया है। उनके दक्षिणवासी होते हुए भी उन्होंने उत्तर भारतीय संगीत में काफ़ी रुचि और पांडित्य दिखाई। उत्तर के तीन मशहूर संगीतकार स्वाति तिरनाल के दरबार में यानी कोर्ट म्यूजिशियन के रूप में जुड़े हुए थे। वे थे ग्वालियर के अलाउद्दीन और लक्ष्मण दास और पंजाब के सुलेमान। यह था सन 1829 से 47 तक की बात। स्वाति तिरनाल ने शास्त्रीय संगीत के बारे में एक पुस्तक भी लिखी, खास करके मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य के लिए इन्होंने काफ़ी बंदिशें बनाई हैं। हाँ, यह बताना भूल गई कि स्वाति तिरनाल ने न केवल ध्रुपद बल्कि टप्पा भी कंपोज किए थे, लेकिन ये मिल नहीं रहे हैं आजकल। तो आज आपको सुनाना चाहती हूँ भैरवी राग में एक कृति जो कहरवा ताल में है। एक और बात यहाँ बताना चाहूँगी कि भैरवी जो दक्षिण में गाते हैं वो उत्तर भारतीय भैरवी से एकदम अलग है। कर्नाटक पद्धति में जो भैरवी गाते हैं उसमें काफ़ी ठाट के स्वर लगते हैं। मैं अब तो कृति जो पेश करने जा रही हूँ वह उत्तर भारतीय पद्धति के भैरवी राग में रचित है। तो सुनिए रामचंद्र प्रभु राग भैरवी में।

0: आलाप का ये गीत राग भैरवी पर आधारित था। आवाजें थी लता मंगेशकर और दिलराज कौर की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग भैरवी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम नमस्कार अलवर। तो हेलो जी, नमस्कार। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय कार्यक्रम नमस्कार अलवर में। तो श्रोताओं, देखिए कार्यक्रम में एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं हम कार्यक्रम को लेकर, और मैं हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा हूं, और उम्मीद ही नहीं बल्कि इस बात का पूरा यकीन है कि आप सब भी बहुत ही अच्छे से होंगे और रेडियो प्रोग्राम्स का मज़ा लगातार उठा रहे होंगे, और अब तो मौसम का भी मज़ा उठा रहे होंगे, क्योंकि देखिए अब कल इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ रही थी, इस गर्मी के बाद में कल रात को जो बारिश हुई है उससे मौसम जो है वो बहुत ही खुशनुमा हो चुका है। सभी लोगों के मन में एक वापस से भाव जागा है कि हाँ, अब कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए, कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, आसपास के दर्शनीय स्थलों को देखना चाहिए। तो मौसम भी अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है। तो देखिए आज इस अच्छे अच्छे मौसम के अंदर हम क्या बातें करने वाले हैं आज के कार्यक्रम में, इस बात की आपको जानकारी देते हैं। तो देखिए श्रोताओं, आज है 29 मई का दिन। 29 मई का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय रूप से यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व में एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उस दिवस का नाम है अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। तो अभी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस क्या है, कैसे, कब से मनाना शुरू हुआ, क्यों मनाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। तो देखिए, पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो केवल भूगोल का हिस्सा नहीं होते बल्कि मानवीय चेतना, साहस और पराकाष्ठा के प्रतीक भी बन जाते हैं। माउंट एवरेस्ट, ये केवल 8,848.6 मीटर ऊंचा बर्फ और चट्टान का एक विशाल पिरामिड नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के सामने एक इंसानी जज्बे की सबसे कठिन परीक्षा का रंगमंच है। साथियों, हर साल 29 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस इसी अदम्य मानवीय साहस, विजय और हिमालय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक वैश्विक उत्सव है। ये दिवस हमको ये याद दिलाता है कि जब इंसानी इरादे फौलादी हो जाएं तो प्रकृति की सबसे दुर्गम और संप्रभु ताकतें भी शीश झुका देती हैं। 29 मई सन 1953 का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है, जब न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने पहली बार इस धरती के तीसरे ध्रुव पर अपने कदमों के निशान छोड़े थे। माउंट एवरेस्ट के इतिहास, उसके सांस्कृतिक और भूवैज्ञानिक महत्व, पर्वतारोहण की बदल

चुनौतियों, पर्यावरण का संकट और वैश्विक दिवस की प्रासंगिकता का एक गहन विश्लेषण अब हम करने की कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस तरीके से मनाया गया, क्या इसका इतिहास रहा, आगे क्या क्या इसकी संभावनाएं हैं। तो साथियों देखिए, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को मनाने की जो शुरुआत है ना, ये अचानक से नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे सदियों का संघर्ष और एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। अगर हम ऐतिहासिकता की बात करें तो ब्रिटिश पर्वतारोहण अभियानों की एक लंबी और जानलेवा श्रृंखला के बाद में 1953 में कर्नल जॉन हंट का अभियान दल एवरेस्ट के तकरीबन करीब पहुंचा। 29 मई की सुबह को जब तापमान शून्य से भी कई डिग्री पर नीचे था और हवाएं हड्डियों को भी जमा देने वाली थी, तब एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने दक्षिण कर्नल से अपनी अंतिम चढ़ाई को शुरू किया। सुबह 11:30 बजे उन्होंने उस शिखर पर कदम रख दिया जहां पहले कोई इंसान आज तक नहीं पहुंच पाया था। उन्होंने वहां पर पहुंचकर तस्वीरें ली। तेंजिंग ने बर्फ में मिठाइयां और प्रसाद को दबाया और हिलेरी ने एक छोटे से क्रॉस को वहां पर गाड़ दिया। ये खबर जब दुनिया भर में फैली तो एक नए युग की शुरुआत जैसी हो गई। वर्ष 2008 में जब एडमंड हिलेरी का निधन हुआ, तब नेपाल सरकार ने उनकी स्मृति को शाश्वत बनाने और वैश्विक स्तर पर पर्वतारोहण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्तर पर एक निर्णय लिया। नेपाल ने घोषणा की कि हर वर्ष 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से हर साल नेपाल सहित पूरी दुनिया में इस दिन पर्वतारोहण जगत से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित किया जाता है, मैराथन आयोजित की जाती है और हिमालय के संरक्षण पर गंभीर विचार विमर्श किया जाता है। इसके नामकरण के दिलचस्प इतिहास के बारे में अगर हम बात करें ना, तो इस शिखर को तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की देवी माँ। नेपाली संस्कृति में इसे सागरमाथा कहा जाता है, जिसका अर्थ है आकाश का भालिया माथा। 1856 में भारत के ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के दौरान इसे पीक नाम दिया गया था। तत्कालीन सर्वेयर जनरल सर एंड्रयू वॉ ने अपने पूर्ववर्ती और भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखने की सिफारिश की गई। हालांकि जॉर्ज एवरेस्ट ने खुद इसका विरोध किया था, क्योंकि वो स्थानीय नामों को प्राथमिकता देते थे। लेकिन अंत में 1865 में रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ने आधिकारिक तौर पर इसे माउंट एवरेस्ट को नाम के रूप में स्वीकार कर लिया। एवरेस्ट का निर्माण भारतीय टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में हुई भीषण टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ है। ये तकरीबन आज से लगभग 40 से 50 मिलियन पूर्व शुरू हुई थी और ये पर्वत श्रृंखला आज भी जीवित है। वर्ष 2020 में नेपाल और चीन के द्वारा संयुक्त रूप से की गई वैज्ञानिक माप के अनुसार एवरेस्ट की वर्तमान आधिकारिक ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8848.86 मीटर होती है। टेक्टोनिक प्लेटों के निरंतर दबाव के कारण यह पर्वत आज भी प्रतिवर्ष 4 मिलीमीटर की दर से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। एवरेस्ट विजय के जो प्रमुख ऐतिहासिक मील के पत्थर हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। हिलेरी और तेंजिंग की सफलता के बाद में एवरेस्ट पर्वतारोहण के इतिहास में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने मानव की क्षमता की सीमाओं को बार बार पुनर्परिभाषित किया। 1975 में प्रथम महिला का कीर्तिमान, जापान की जुंको ताइबे ने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर फतह कर दुनिया की पहली महिला पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल किया। अब इसके बाद कृत्रिम ऑक्सीजन के बिना चढ़ाई करना, तो रेनहोल्ड मेसनर और पीटर हेवेनर ने इस मिथक को तोड़ दिया कि इंसान बिना सिंथेटिक ऑक्सीजन के इतनी ऊंचाई पर जीवित नहीं रह सकता है। उन्होंने 1978 में बिना ऑक्सीजन के इस शिखर को छुआ। इसके अलावा भारत की पहली नारी शक्ति की अगर बात करें तो बछेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और भारत का नाम इतिहास में अमर किया। कामी रीता शेरपा ने मई 2024 तक रिकॉर्ड 30 बार एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जिसे छू पाना भी असंभव प्रतीत होता है। साथियों, अगर जब एवरेस्ट का नाम आता है तो एक शेरपा समुदाय का नाम अवश्य ही इसके साथ में लिया जाता है। एवरेस्ट का जिक्र तब तक अधूरा है जब तक कि हम शेरपा समुदाय के योगदान को न समझें। शेरपा पूर्वी नेपाल के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले एक अत्यंत साहसी और वफादार जातीय समूह है। वैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि शेरपाओं के शरीर में उच्च ऊंचाई और ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता सामान्य इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है। उनके बिना कोई भी विदेशी पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। न केवल वे मार्गदर्शक होते हैं बल्कि एवरेस्ट के सच्चे रक्षक और पूजक भी हैं। अगर हम आधुनिक पर्वतारोहण की बात करें तो व्यावसायिकता, चुनौतियां और डेथ जोन क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। आज के दौर में एवरेस्ट पर्वतारोहण का एक बड़ा व्यवसाय बन चुका है। हर साल सैकड़ों लोग

लाखों रुपए खर्च करके एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक और गियर के बावजूद एवरेस्ट का खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में आगे भी जानकारी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक।

0: तो आएगी ना।
1: सुगंध क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
0: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
1: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड

0: अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
2: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
1: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
2: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।
3: तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे पर्वतारोहण के क्षेत्र में आज व्यावसायिकता चुनौतियां, इसके डेथ जोन, क्या क्या खतरे हैं, इन सब चीजों के बारे में। तो देखिए श्रोताओं, समुद्र तल से 8000 मीटर से भी ऊपर के क्षेत्र को डेथ जोन कहा जाता है। इस ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो केवल एक तिहाई रह जाती है। मानव की कोशिकाएं मरने लगती है, मस्तिष्क और फेफड़ों में पानी भरने का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। अत्यधिक ठंड के कारण फ्रॉस्टबाइट का खतरा होता है, जिससे अंग हमेशा के लिए सुन या बेकार हो सकते हैं, क्योंकि ये जो ठंड होती है ये -40 to -50 degrees तक जा सकती है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो भी बहुत है। हाल के वर्षों में विशेषकर मई के महीने में जो वेदर विंडो बहुत छोटी होती है, एवरेस्ट की चोटियों पर सैकड़ों पर्वतारोहियों की एक लंबी कतारें देखी जाती है। हिलेर स्टेप के पास होने वाले इस ट्रैफिक जाम के कारण पर्वतारोहियों का ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, जिससे कई सारी मौतें अब तक हो चुकी हैं। व्यावसायिकता के कारण अकुशल पर्वतारोहियों को भी परमिट मिल जाता है, जो पूरी टीम के लिए खतरा बनते हैं। तो ये कुछ चुनौतियां हैं। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित जो संकट है वो भी बहुत बड़े हैं, जैसे कि कचरे का पहाड़ बनता जा रहा है हमारा हिमालय। ग्लोबल वार्मिंग और अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप के कारण एवरेस्ट जो है वो वर्तमान में एक गंभीर पारिस्थितिक संकट से गुजर रहा है। यहाँ पर कचरा प्रबंधन नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वैश्विक तापमान जो है उसके अंदर वृद्धि हो रही है, तो पिघलने का जो बर्फ पिघलने का खतरा है वो बना रहता है। लेकिन अब नेपाल की सरकार और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के द्वारा साफ एवरेस्ट अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पर्वतारोहियों के लिए अपने साथ जो कचरा है उसे वापस लाना अनिवार्य कर दिया गया है। हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस की वैश्विक प्रासंगिकता क्या है और ये हमें क्या संदेश देती है। तो देखिए, ये जो दिवस है केवल अतीत के जश्न का नहीं है, बल्कि ये भविष्य के संकल्प का दिन है। ये दिवस हम लोगों को मुख्य संदेश जो देता है वो यही है कि हमें पर्वतारोहण और प्रकृति के बीच में संतुलन बनाना होगा, परमिटों की संख्या सीमित करना पड़ेगा और कचरे के प्रति शून्य सहिष्णुता को अपनाना ही पड़ेगा और इसको अब अनिवार्य बनाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा एवरेस्ट पर चढ़ने वाला दल किसी एक देश का नहीं होता, उसमें अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे की जान बचाने के लिए खुद को दांव पर लगाते हैं। ये वैश्विक भाईचारे का एक अनूठा उदाहरण है। तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश है भाईचारे का। इसके अलावा नेपाल की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले पर्यटन उद्योग और स्थानीय गाइडों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति दुनिया को जागरूक भी करता है। साथियों, जब हम इस एवरेस्ट डे के बारे में बात कर रहे हैं तो एडमंड हिलेरी की एक बहुत कही प्रसिद्ध बात जो है उसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि हम पहाड़ पर विजय नहीं पाते हैं, बल्कि खुद पर विजय पाते हैं। माउंट एवरेस्ट इंसानी अहंकार को तोड़ने का और साथ ही साथ इंसानी हौसले को आसमान देने का एक माध्यम है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के अवसर पर पूरी मानवता को यह संकल्प करना चाहिए कि जिस सागर माथा ने हमें हमेशा प्रेरित किया है, उसकी जो पवित्रता है, गरिमा है और पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसको करना हमारा परम कर्तव्य है। हिमालय जब सुरक्षित रहेगा तभी मानव सभ्यता और उसका साहस भी आने वाली सदियों तक सुरक्षित और प्रेरित रहेगा। लीजिए, अब सुनते हैं।

तो दोस्तों आखिर में आपसे यही कहना चाहेंगे कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय एयरवेस दिवस मनाया जा रहा है, ये हम लोगों को सिखाता है कि हम किसी भी चुनौती के सामने अपने घुटने ना टेके बल्कि उसके सामने डटकर खड़े हो जाएं तो हम हर चीज़ से पार पा सकते हैं, हर चीज़ पर अपनी जीत को दर्ज कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए, अपने जीवन के अंदर अपने हर काम के अंदर इन चीज़ों को अपनाना चाहिए और एक सकारात्मक पहलू को लेकर हमें हमेशा साथ में चलना चाहिए। अब देखिए श्रोताओं, बातें तो बहुत करनी है, मन बहुत है, लेकिन घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही हैं कि आप सभी से ले ले विदा। तो हम जा रहे हैं इसी वादे के साथ में कि आप सभी से एक बार फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपने दोस्त सावन कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, अलवर।

अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार अलवर एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत।

संजीव दर्शन का संगीतबद्ध किया और समीर का लिखा ये गीत आपने सुना फिल्म मन से। आवाजें रही उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की।

0: सुरक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: आगे कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज में ये गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म जिस्म से। शब्द रचना रही नीलेश मिश्रा की और संगीत दिया एमएम करीम ने।
1: क्यूआर कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
5: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी। हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
4: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
5: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

अनु मलिक का संगीतबद्ध किया और आनंद बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना अलका याग्निक, उदित नारायण और साथियों की आवाज में फिल्म साया से।

लीजिए कार्यक्रम का ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म रहना है तेरे दिल में से। आवाजें हैं रूप कुमार राठौड़ और साथियों की, शब्द रचना है समीर की और संगीत से संवारने का काम किया है हैरिस जयराज ने।

बैनी दयाल, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाज में ये गीत आपने सुना फिल्म युवराज से। संगीत दिया बाइंड्स लव ने। और लीजिए अब फिल्म संगीत का ये अगला और आखिरी नगमा आपको सुनवाने जा रहे हैं एसपी बालासुब्रमण्यम, चित्रा और साथियों की आवाज में फिल्म रोजा से। संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

तो श्रोताओं, ये था आज का फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब घड़ी की सुइयां ये इशारा कर रही है कि ले रहे आपसे विदा तो जा रहे हैं इसी वादे के साथ कि एक बार फिर से आपके साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अभी आपने सुना फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर। 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: आजकल भारत के गांव गांव में छपा का रूप बदल गया है। जो पहले छपा पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सोखते थे, वहां पर अब बिजली बिल ज्यादा हो रहे हैं। गांव गांव में लोग सोलर पैनल

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।
1: कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन

0: सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और BSF के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
2: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
1: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्विशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्विशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्विशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने

0: गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है। समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है।

0: सिद्धारमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिव कुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम पृष्ठ पर दी है। और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz पर आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:15 हो रहे हैं। लीजिए अब पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं मेहंदी हसन की गाई हुई गजलें।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
3: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी। हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
2: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
3: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रम के साथ।

अभी आपने सुना सुगम संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सर्स का चैनल है। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनवाते हैं आपको एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूं।
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
0: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
2: गांव ढाणे कुतुबपुर जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
0: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
2: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
0: जी, ये बात तो है।
2: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: जी हाँ, जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
2: जी,
0: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, एक खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
2: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
0: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
2: जी,
0: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
2: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
0: काले गुलाब?
2: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
0: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें

0: कपड़ा दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है
1: जी,
0: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है
1: जी।
0: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
1: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
0: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है
1: जी।
0: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
1: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
0: जी वो तो है।
1: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
0: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है
1: जी।
0: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
0: आइए अब बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
1: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का
0: जी,
1: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
0: जी विमलेश जी, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते
1: जी,
0: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं।
1: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
0: जी तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीत में कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: पच्चीस जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सर्विस कर, पीछे जा, हाँ, और सर्विस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
4: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
5: धन्यवाद श्रीमान।
4: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
5: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
4: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
5: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
4: बेस्ट ऑफ लक।
0: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
1: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
0: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सब ने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे। हम तैयार हैं। लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं

0: मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालू बार में भी दिखाएंगे।
1: जी,
2: हम तैयार हैं।
0: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
3: वो क्या साहब?
0: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है, यह नंबर वन और यह नंबर टू।
3: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
0: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
1: जी साहब।
0: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: तो शुरू करते हैं अभियान, सब तैयार हो जाओ। शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
4: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
5: मार्ग दुर्गम था, खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी। लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। चार घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
4: आक्रमण हुआ
5: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
1: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
5: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
4: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
0: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
5: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके

0: देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थी। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
2: ना छोड़नू।
0: जिसका अर्थ है, उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
3: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आपने सुना NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और दूसरे कारणों से होने वाले आबादी बदलाव की जांच के लिए बनाई गई समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: श्री शाह ने अहमदाबाद में प्रस्तावित कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की भी समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि अहमदाबाद साल 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित की जा रही है। वहीं 2036 के ओलंपिक के लिए आधिकारिक बोली भी पेश की जा चुकी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात के लिए प्रयास कर रही है कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में नहीं रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान महिलाओं के नाम पर और संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 93 खनन लीज रद्द करने के मामले में

0: राज्य सरकार को एसएलपी पर सुनवाई करते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जनवरी 2026 में भीलवाड़ा, टोंक, सवाईमाधोपुर और अजमेर जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल खनन लीज और एलओआई धारकों को खनन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए बजट घोषणा की क्रियान्विति में 676 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से जारी इस मंजूरी के तहत 686 किलोमीटर से अधिक लंबाई सड़कों का निर्माण और विकास कार्य किया जाएगा। इसमें अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नागौर और पाली सहित 33 से अधिक जिले लाभान्वित होंगे। इन जिलों में 77 सड़कों का निर्माण और मरम्मत का काम किया जाएगा। इससे दूरदराज के गांव तक भी बेहतर संपर्क सुविधा मिल सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के उपयोग में कमी लाने के लिए अब ई वाहन खरीदेगी। प्रदेश के स्वायत्त शासन मंत्री और पाली जिला प्रभारी झावर सिंह खर्रा ने कल मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर ईंधन बचत के लिए ये पहल की जा रही है।
1: एक सप्ताह में अगर ये परिस्थितियां सामान्य हो जाए, पेट्रोल कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ और गैस की उत्पादन बढ़े, आपूर्ति बढ़े, बाजार में कीमतों में कमी आएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो फिर भारत में भी पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में निश्चित रूप से कमी होगी। राज्य सरकार ने भी अभी तय कर लिया है कि आज के बाद किसी भी सरकारी विभाग में किसी भी वाहन की खरीद होगी तो ईवी वाहन ही खरीदेंगे, ताकि पेट्रोल डीजल की कीमत को न्यूनतम से न्यूनतम किया।
0: राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाव बागड़े ने जयपुर के बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के पहले कुलगुरु और विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलगुरु प्रोफेसर देव स्वरूप को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किए गए हैं। उन पर नियुक्तियों में भारी गड़बड़ियां करने और विश्वविद्यालय नियमों को दरकिनार करने का आरोप था। मशहूर शायर बशीर बद्र को कल भोपाल में सुपुर्दे खाक किया गया। लंबी बीमारी के बाद 91 वर्ष की उम्र में कल भोपाल में उनका निधन हो गया था। डॉक्टर बद्र की शायरी ने जिंदगी और तमाम एहसासात के कई रंग देखने को मिलते हैं। उनकी गजलों ने देश दुनिया में लोगों के दिलों को छुआ। उर्दू गजल को आम आदमी तक पहुँचाने और मकबूल करने के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा।
2: धूप के पार सितारों का नजर लगता है, उस पहाड़ी पे मुझे चांद का घर लगता है। चांद मेहराब पे सोई हुई ये कायत है, बेवजू आंखें हैं, पड़ते हुए डर लगता है।
0: प्रदेश में प्रचंड गर्मी और तेज धूप तथा गर्म हवाओं से लोग बेहाल हो रहे हैं। प्रदेश के 6 शहरों में कलपारा 46 डिग्री से ऊपर मापा गया, वहीं 11 स्थानों पर 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। 47.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म स्थान रहा। करौली, दौसा, चूरू, जयपुर, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित कई स्थानों पर रातें भी काफी गर्म रही। राजधानी जयपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 45.4 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। वहीं न्यूनतम तापमान 32.8 डिग्री रहा, जिससे लोगों को रात में भी राहत नहीं मिल सकी। मौसम विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। अलवर में देर रात कई इलाकों में हल्की बारिश हुई, वहीं कहीं कहीं ओले भी गिरे। झुंझुनू और हनुमानगढ़ में कई स्थानों पर तेज अंधड़ के साथ झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। भरतपुर में भी तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बारिश से होने से राहत मिली है। हालांकि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और

0: बिजली के पोल भी धराशायी हुए। धौलपुर में कल देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर अब तक रुक रुक कर जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि तापमान में काफी गिरावट आई है और मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम विभाग ने आज बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में अंधड़ के साथ हल्की बरसात होने के आसार जताए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मुकाबला चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से सामना करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से निकालने की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य के 4 जिलों की करीब 93 बजरी खनन पट्टों की ई नीलामी रद्द करने के मामले में संबंधित पक्षकारों से जवाब मांगा। राज्य सरकार ईंधन खपत में कमी लाने के उद्देश्य से ई वाहन खरीदेगी। और प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां, अलवर और झुंझुनू में ओले गिरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

उर्दू गज़ल को आसान और आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया। उनकी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गज़लों का इस्तेमाल जुनून, मसान, ज़ीरो और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में किया गया है। हमारी अधूरी कहानी के टाइटल ट्रैक की शुरुआत उनकी बेहद खूबसूरत गज़ल की पंक्तियों से शुरू होती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे चेहरे को पड़ जाएगा।

ही कहानी फिल्म से ये गाना, रश्मि विराग के बोल जीत गांगुली का संगीत। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार में उनकी चर्चा जिनके बुलंद आवाज और रोबदार अभिनय की दुनिया कायल है।
1: मालूम होता है बदहवासी ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती।
2: अपनी दी गई इस निशानी को पहचानिए जिल्लेदाई, याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ।
1: लो देखो
2: अनारकली।
1: देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी, और ये राज कि अनारकली जिंदा है तुम्हें राज रखना होगा, ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी।
2: ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहीशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी।
1: अनारकली बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम है। एक गुलाम की बेबसी पर गौर करोगी तो शायद तुम हमें माफ कर सको।
0: जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच

को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो हैं आज के फनकार पृथ्वीराज कपूर।

राज कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया।

0: सन 1960 में बनी फिल्म मुगल-ए-आज़म में अकबर के किरदार को कालजयी बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रोबीले शहंशाह का मुगल-ए-आज़म फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा।
1: सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दे।
2: मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा।
1: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनार कली तुझे जीने नहीं देंगे।
2: कनीज तो कब की मर चुकी।

पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चस्का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 बरस में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदी पर पहुंच गए।

1968 की SS वासन की फिल्म तीन बहुरानियां पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म तीन बहुरानियां में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर।

0: मुगल-ए-आज़म में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है।
1: क्या ज़लीला ही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
2: ये बदनसीब बाप जिसे दुनिया शहंशाह कहती, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है।
1: बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया।
2: शहंशाह रोया नहीं करते शिव,

0: वह अपनी आंखों में आंसू है। शेखू, यह गरीब बाप शहनशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है।
1: और सलीम अपनी मोहब्बत से।
0: शेखू, मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहनशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगा।
0: सलीम, शहनशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोब।

0: ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगी।
0: सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोग अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी।

रंगमंच पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया।

0: खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

200 रुपहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह गए।

0: शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
3: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी। हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
2: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
3: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।
4: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 10:02 हुए हैं। लीजिए आप सुनते हैं विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
5: विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
6: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
5: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे। जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वहीं खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
6: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
5: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
6: कैसा लगता जी, है जी, उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
5: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम की करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे। गाँव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
6: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
5: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था। पूरा कार्यक्रम जितना चलता है भाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक का आपको बता सकते हैं।
6: तो हमारे पक्के लिसनर हैं आप।
5: यही जान लीजिए हम इसी समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6-7 जब से यानी हम बहुत संभाल हैं, सबसे सुन रहे हैं।
6: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे आप क्या करते हैं, खेत में काम करते हैं?
5: पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, इसमें गर्मी का टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले आते हैं, फिर 3-6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं। अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
6: काम कहाँ करते हैं?
5: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
6: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
5: जी, हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जीवन में एक पल भी रोना ना।
6: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा किनी जी।
0: नमस्कार
1: मैडम। खांजीपीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजीपीर उदयपुर से, झीलों की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। कैसे हैं आप बताइए, उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है
0: जी।
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीले हैं, चारों तरफ झीले फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है
0: जी।
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीले हैं काफी, क्या कह रहे धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है, और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेह सागर के आसपास, और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीले भी अच्छी है
0: जी। आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट जब आते हैं तो किन किन चीजों को देख कर जाते हैं
1: जी।
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है, आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या
0: जी।
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने, चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: something.
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
2: मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
2: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
1: अरे
2: आपसे तीसरी बार बात हो रही है।
1: क्या बात है।
2: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसाय गीत शुरू हुआ उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ। अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
1: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
2: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उससे मैं क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ तो लिखता जरूर हूँ।
1: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
2: और पत्र भी भेजे अभी भारतीय के स्टूडियो में।
1: अच्छा,
2: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
1: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
2: बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा।
1: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में, की बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है?
2: बताइए की मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
1: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
2: देखो
1: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
2: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस वो रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या ये

0: जिनको थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। बस वही बात है,
1: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का और सब चीजों का।
0: और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायागीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापिस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं 2 बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाओ तो मिस हो जाता तो फिर वापिस से यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
1: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायागीत।
0: छायागीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती है और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
0: दीदी आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हमजोली फिल्म से आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में एक गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम जाने दो जाना।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: ढल

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका हैदर साहब।
1: और क्या हाल चाल मैडम?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: बस बढ़िया है, यहाँ भी मतलब अभी तो थोड़ी गर्मी का प्रकोप ज्यादा है एमपी में, तो लो बहुत चल रही है मैडम अभी फिलहाल। तो
0: जहाँ बात की जा रही है वहाँ पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा तापमान है, और अलग अलग जगहों पर पता चलता है कि किस तरह से लोग जो इस गर्मी में बेहाल हुए जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो बताइए हैदर साहब, अभी जो बकरीद है, बकरीद को किस तरह से मना रहे हैं आप, और क्या संदेश देना चाहते हैं बकरीद के मौके पर?
1: संदेश तो ये देना चाहते हैं मैडम के मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है, और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाए, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
1: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी प्रोग्राम है मैडम।
0: 1980 से सुन रहे हैं?
1: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
0: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
1: ये रांझा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
0: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं, मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।
0: क्या बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए
1: जी,
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी। तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप
1: जी, जी, जी।
0: तो बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल के रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने, और इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों
1: जी,
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ, दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ, खुराक में है।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान, बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ, दाल, उसको रिपेयर करते हैं हम कुएं और इससे।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं लोकल भाषा, उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं?
1: जी, जी।
0: तो नए बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? टैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से।
1: जी,
0: कट फट जाती है। अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम जी, नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
0: स्वागत है आपका फिर तो।
1: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
0: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
1: हाँ जी,
0: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
1: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
0: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
1: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
0: हाँ।
1: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
0: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है?
1: मेहनत तो है मैडम जी।
0: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
1: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते है,
0: बाजरे के आटे की।
1: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
0: अच्छा, मोठ का भी।
1: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है खाने के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है, तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
1: हाँ जी हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा, हाँ। रात को वो बन कर तैयार हो जाता है।
0: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
1: बिल्कुल जी बिल्कुल जी, वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
0: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
1: हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल
0: जी। चलिए, तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सैटेलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर वो हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया, और शुक्रिया विविध भारती जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं। और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा, ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है, क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी,
0: तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिड़किया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के मन का सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला खासागसम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू, ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: वहाँ मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक, क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10 कंप्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं TRPF कमांडू में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं अपनी?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम,
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम से पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ हम ठीक है। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट आ रहे होंगे घूमने इन दिनों?
1: हाँ, पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में। जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता करना सिखाता है?
1: ये तो गरीबों के बढ़ना है, हर किसी को भी बांटना है। ये
0: आपसी प्रेम और भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ, ये तो बड़े त्योहार है।
0: आप ऐसा सोचते हैं कि सभी समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुनाए गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छलिया लगता है।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करवट अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002462286702888 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022287022888 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के ठीक 11 बजे हैं। आइए अब सुन लेते हैं ये जरूरी संदेश।

0: प्रगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
6: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी हर राज्य हर परिवार के साथ। कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
5: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
6: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।
7: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आइए अब सुनते हैं विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: बरसात की रात, इस फिल्म से ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मनाडे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने से लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अलीशा की आवाज में ये गीत अलीशाज लव नोट्स एल्बम से।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक। तन्हा दिल एल्बम का नाम है, शान की आवाज में ये गीत।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हम तो।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में

0: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठे की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: घुसपैठे को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई। श्री शाह गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामी नाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृहमंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के मंत्रियों ने आर्थिक विकास और व्यवसायों के लिए व्यावसायिक अवसरों में वृद्धि करने पर द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश संबंधों की पुष्टि की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला किया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और किसान समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति चौधरी चरण सिंह की अटूट प्रतिबद्धता को हमेशा याद रखा जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मिला जुला असर देखा गया। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 75,904 पर था। निफ्टी 25 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर कारोबार कर रहा था। IPL क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

फिल्म शोर से ये गीत अभी आप सुन रहे थे मना डे महेंद्र कपूर श्यामा और साथियों की आवाज़ों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी और आज यादों की महफिल में वो गीत जो जीवन पर या जिंदगी पर आधारित हैं और गीतकारों ने अपने अपने तरीके से अपने अपनी परिस्थितियों के हिसाब से जिंदगी के बारे में लिखा है।

0: किशोर कुमार को आप सुन रहे थे आपकी कसम फिल्म से, और अब वक्त है एक छोटे से अंतराल।
1: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय दोपहर के 12:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
2: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी,

0: ESIC साथ है हर घड़ी।
1: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
0: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
1: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: FM बैंड 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। दोपहर के 12:16 हुए हैं। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म से आप किशोर कुमार को सुन रहे थे। अनजान ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। आज यादों की महफिल में जीवन के अलग अलग रंगों को, भावों को खूबसूरती से लिखे गीतों में जिन्होंने पिरोया है, वो गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: भूपिंदर और अनुराधा पौडवाल को आप सुन रहे थे दूरियां फिल्म से। जयदेव का संगीत था और सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 12 जिलों में तेज अंधड़ और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच इस बदलाव से तापमान में गिरावट और लू का असर कम होने की संभावना है। विभाग के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 जून तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। इस बीच श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू तथा आसपास के इलाकों में कल बारिश के साथ ओले भी गिरे। वहीं कोटा, पिलानी, जैसलमेर, अलवर, फलोदी, बीकानेर में गर्म हवाएं चली और हीट वेव का असर बना रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने परिंदों और पशुओं के लिए भी पानी

0: उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
1: राजस्थान में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, नौतपा के कारण तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में आप सभी से सावधानी बरतने की एक अपील करता हूँ। यथासंभव तेज धूप में बाहर जाने से बचिए। ऐसी गर्मी में हमें बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भामाशाह दानदाताओं से अनुरोध है कि अपने गाँव, मोहल्ले और बाजार में प्याऊ लगाएं, राहगीरों के लिए ठंडे पानी की और छांव की व्यवस्था कीजिए।
0: प्रदेश में टीबी मुक्त भारत 100 दिवसीय विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 19 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि 24 मार्च से राज्य के 11,000 से ज्यादा अधिक जोखिम वाले गांवों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 5,000 आयुष्मान आरोग्य शिविर लगाए जा चुके हैं, जिनमें 16.5 लाख से अधिक एक्सरे और करीब 2.25 लाख से ज्यादा NAT की जाँच की गई है। उन्होंने बताया कि सक्रिय केस गतिविधियों में कुल 32,000 नए टीबी रोगियों की पहचान की गई है। वहीं इस साल जनवरी से अब तक 38,000 रोगियों को पोषण किट वितरित किए गए हैं, साथ ही 2,000 नए निक्षय मित्र भी जोड़े गए हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत प्रदेश भर में आज भी जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां हो रही है। इसी कड़ी में भरतपुर में जल संरक्षण और प्रबंधन को लेकर जागरूकता कार्यशाला रखी गई है। वहीं जैसलमेर के रामदेवरा में राम सरोवर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान लोगों को पारंपरिक जल स्रोतों को साफ रखने के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर वृक्ष पूजन कर कलश यात्रा भी निकाली गई। उधर बालोतरा में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया। इसके तहत पुराने तालाबों, जोहड़ और बावड़ियों की साफ सफाई और मरम्मत की जा रही है। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी उन्हें याद करते हुए कहा कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए चौधरी चरण सिंह हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। बालोतरा में कल शाम हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पचपदरा क्षेत्र के भांडियावास में हुई, जहां एक कार का टायर फटने से वह बेकाबू होकर पलट गई। इससे कार सवार 3 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं एक की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। उधर कोटा रेल मंडल के दराकी नाल में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर अंडरपास निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से रेलवे के 2 इंजीनियरों की मृत्यु हो गई। उदयपुर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 2 श्रमिकों की मौत हो गई। पाली जिले में देर रात ट्रेलर की टक्कर से RTO विभाग में कार्यरत गार्ड की मृत्यु हो गई। दुर्घटना जॉर्डन टोल प्लाजा के पास हुई, जहां वे RTO टीम के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में अनेक स्थानों पर योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को योग से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर में भी आयुष विभाग और पतंजलि योग समिति की ओर से योगासन कार्यक्रम रखा गया। इसके जरिए लोगों को योग से होने वाले फायदों की जानकारी दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

किस्मत फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स कौन सी फिल्म से है, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं, और संगीत अगर ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है। प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं। ये

ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफर का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर का इंतजार खत्म हुआ और हम सफर में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है, तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझनें बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ है या जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्रिया करें ज़िंदगी में हर रोज़, हर सुबह सबसे पहली चीज़। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीज़ों का और गिनते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है ऐसा कहूँगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवर है और बहुत सारी शब्द जो इनको नज़र आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत ज़रूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाज़ार की बात की गई थी, है ना। मीना बाज़ार, जौहरी बाज़ार, इस तरह के बाज़ार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाज़ार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाज़ार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतज़ार है। आप मैसेजेस भेजिए, तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था, और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छाँव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफ़ी चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाज़ारों की, तो दिल्ली का लाल किला मीना बाज़ार घूमा है इन्होंने, एक साथ ही लिखते हैं, और बार बार यही

नया बाज़ार, दिल्ली का पहाड़गंज, पालिका बाज़ार घूमे हैं और बड़े मॉल में भी मीना बाज़ार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल बाज़ारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाज़ारों के नाम अगर आ जाएं तो मज़ा आ जाएगा। और वहाँ पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मज़ा कुछ और है और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीज़ें खरीदने का भी मज़ा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे प्रेम पर्वत से, ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतज़ार रहेगा। चलिए बढ़ते हमारे अगले गीत की तरफ और आपके इन दो जवाबों का इंतज़ार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है और साथ ही साथ बाज़ारों के नाम और वहाँ पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आर डी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घूमा हुआ है मैंने जौहरी बाज़ार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है। और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं। फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए, जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा, आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाज़ार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफ़ी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफ़ी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, और ऐतिहासिक छत्ता बाज़ार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाज़ार है वहाँ पर, जहाँ पर ना घूमें तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफ़ी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहाँ से दुपट्टे खरीदे हैं, और वहाँ पर लकड़ी के भी काफ़ी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफ़ी पहले घूमी हूँ तो काफ़ी कुछ लिया है वहाँ से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के, और बहुत सी दूसरी चीज़ें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मज़ा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाज़ार जो कि रात भर खुला रहता है और वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकूला में भी हाट बाज़ार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे थे फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए। जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुँच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं बिल्कुल। और बाज़ारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि

ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाजार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथ ही लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिगी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार और भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाज़ार है, सांगानेर बाज़ार, पवन बाज़ार, आज़ाद बाज़ार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ़ हूँ इससे भी क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी ज़रूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता है ना, अलग अलग जगह की जानकारियाँ मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं। बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफ़ी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुँच रहे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और विजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नज़दीक है जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट और खरीदारी का मज़ा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहाँ मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांव तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफ़ी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर ज़िले में बड़ा बाजार है जहाँ हस्तशिल्प, अच्छी डिज़ाइन की मोजड़ियाँ, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं, दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहाँ से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहाँ के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट

से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है, शायद अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूं तो। और यहाँ पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है, जहाँ पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है, और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव, जो कि पूरी जिले में है, वहाँ पर भी काफ़ी प्रसिद्ध रंगीन छतरियाँ, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीज़ें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैम्प कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया है। हमारे श्रोता लिखे हैं कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं। और काफ़ी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाज़ार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाज़ार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज़ यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाजारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की गली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, और आप सब ने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है, तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाज़ार है। और साथ ही साथ बाज़ारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाज़ार माया बाज़ार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाज़ार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाज़ार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की गली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए, और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, मजनू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: सुरीला सफर का वक्त अब खत्म होने को है, लेकिन आपके प्यारे प्यारे संदेश अब तक है मेरे पास। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाजत चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है सुरीला सफर। आप बने रहें विविध भारती के संग।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी।

राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष

0: थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया, अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।
2: फिर भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं। परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

0: मातरम की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्त कोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशत कोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम, ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। भंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
0: सात अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
1: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और नची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्ज्वल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।

0: 1905 के अंतिम चार महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे वाकबाण न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे। परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केलकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के

0: तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है, वो री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ते चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
1: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपए से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से

0: प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की ऊंची कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष, वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जन भागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारीबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड

0: करण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
1: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
1: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे, विविध भारती

0: लता मंगेशकर को आप सुन रहे थे मेरे महबूब इस फिल्म से। शकील बदायूनी ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: धन्य वो उनकी जवानी।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं और देखिए

0: ये ना स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है जो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा,
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज को नहीं आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे ज्यादा ट्रेन कर दिया।
0: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
1: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
0: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
1: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
0: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
1: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
0: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
1: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
0: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: जी थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मैं रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
0: आपकी
1: मैं पसंद का नाम लेना चाहूंगी मैम।
0: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
1: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
0: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे थे।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं?
1: हाँ हाँ हाँ।
0: प्रेरणा जी कैसी हैं आप?
1: हाँ बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी मुझे बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं घर पे हूँ, मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी,
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका बताएंगे?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ और स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही।
0: सिर्फ नाड़ी देखकर तो आप रोग का पता लगा लेती हैं?
1: हाँ हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं।
0: और जो रोगी होते हैं इन्हें ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: ज्यादा दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में कि जो बच्चा चल नहीं सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन्होंने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप कोई दवाइयाँ देती हैं या?
1: नहीं दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा।
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए?
1: नहीं मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की चली गई।
0: प्रेरणा जी आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं, आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और यादों की बारात का चुरा लिया है मैंने ये दिल को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहां से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी,
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कहते हैं

0: टूरिस्ट आते रहते हैं, मसूरी है यहाँ से, और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
1: आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
0: मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
1: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
0: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
1: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
0: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम, और रेडियो सुनना।
1: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
0: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
1: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
1: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से।
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी,
1: हाँ।
0: कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय?
1: हाँ मैडम, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की?
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते हैं मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ।
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं?
1: जी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम, सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: एक बेटा, दो बेटी।
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी?
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: ओह जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं।
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी।
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिल

0: घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
1: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
0: नहीं, मैं ज़्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ, क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
1: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
0: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
1: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज़ ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं, विविध भारती के भी और प्रसार भारती के सभी कार्यक्रम आप सुन सकती हैं।
0: हाँ।
1: और आप बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है अभी?
0: अभी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, अभी तो मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी सिर्फ दो ही एग्जाम हुए हैं और बाकी के अभी बच्चे हैं।
1: अच्छा, और इसके बाद में आपके जो भविष्य की योजनाएं हैं वो क्या है? इसके बाद आप और आगे पढ़ना चाहती हैं या कोई नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
0: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
1: तो ये आप ट्यूशन्स लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
0: नहीं, मैं ट्यूशन्स नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो अच्छा। उन्हें क्लियर करती हूँ और अपने लिए भी करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
1: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का और आप इस काम को चुनना चाहती हैं, बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
1: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: बात कर रही
1: हैं? मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन।
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं
1: जी।
0: और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं
1: जी।
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: वो आरओ का प्लांट ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े
0: जी।
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो बड़े प्लांट बनते हैं।
0: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
1: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक।
0: हाँ।
1: और रेडियो सुनती रहती हूँ, सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 बजे रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा।
0: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
1: नहीं बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ और उसमें कभी नींद आ जाती है थोड़ी देर लेट जाती हूँ।
0: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
0: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहां से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं।
1: जी
0: सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन।

0: भी हूँ।
1: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
0: हाँ, रेडियो तो पूरे ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
1: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
0: घर में ही है,
1: अच्छा।
0: साइड में बनाया है शॉप जैसा।
1: अच्छा, और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
0: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को।
1: फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
0: जी, सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
1: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं।
0: जी,
1: और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
0: विविध भारती के तो सभी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
1: आपका पसंदीदा कार्यक्रम
0: हेलो
1: कौन सा है?
0: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
1: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
0: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
1: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं?
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और ख़ास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ, मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके।
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी।
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी।
1: हाँ।
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी।
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है।
1: जी।
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर

0: चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है, इसमें बहुत मदद मिलती है। खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारे शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते, तो मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि तो मेरी फैमिली है रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ, मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने वैसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी, पापा मम्मी आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो, मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साई राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।
2: मा, मा,

तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था। कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं। और यहाँ भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था, और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया, उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले, दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी, उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया, और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर जुड़ा है, वे समझाएंगे। और इस सब के साथ गांव को देश के माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा सम्मान भी मिला।

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारत।
2: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं बहनों का कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी सखियों को आपकी रेडियो सखी सोनिका का प्यार भरा नमस्कार। सखियों कैसी हैं आप? आशा करती हूँ आप अपने परिवार के साथ कुशल मंगल होंगी और कर रही होंगी बेसब्री से हमारे इस कार्यक्रम महिला जगत का इंतजार। तो लीजिए, हम हाजिर हैं चर्चा के एक नए विषय और नवीन जानकारी के साथ, और आज हम आपका करवाएंगे मनोरंजन कुछ मधुर गीतों के साथ। तो सखियों, शुरुआत करते हैं चर्चा से। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और वह विषय है अपने अंतस की भी सुने। सखियों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, जैसे सफलता, पैसा, सम्मान, लेकिन सभी के बीच एक आवाज ऐसी भी है जिसे हम अनसुना कर देते हैं, और वह आवाज है हमारे मन की, हमारे अंतस की। सखियों, आज हम सभी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा घर, अच्छी नौकरी, सम्मान, सुखी जीवन हर एक व्यक्ति का सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत भी करते हैं, लेकिन इन सपनों को पूरा करते करते इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एक जरूरी बात भूल जाते हैं, अपने मन या अंतस की आवाज सुनना। अंतस यानी हमारे भीतर की वह आवाज जो हमें सही या गलत का एहसास कराती है। जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं तो अंदर से हल्की सी एक आवाज आती है, यह ठीक नहीं है, और जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो मन को शांति और खुशी मिलती है। यही हमारे अंतस की आवाज है और पहचान है। आज के समय में हम लोग दूसरों की बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनकी बातों को ज्यादा महत्व देते हैं। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, कौन आगे निकल गया, इन सब बातों में हम इतना उलझ जाते हैं कि अपने मन की बात सुनना भी भूल जाते हैं। धीरे धीरे मन में तनाव, चिंता और बेचैनी बढ़ने लगती है। सखियों, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई काम हम केवल दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं, पर हमारा मन उसे स्वीकार नहीं करता। बाहर से बेशक हम खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए जीवन में वही करना जिससे दूसरे खुश रहें हर बार जरूरी नहीं होता, बल्कि हमें अपने अंतस की आवाज भी सुननी बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी जरूरतमंद

की मदद करते हैं, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देते हैं या किसी की परेशानी कम करते हैं तो मन को एक अलग सी शांति महसूस होती है। यह खुशी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, यह हमारे अंतस की खुशी होती है। सखियों, आज मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारे जीवन को बहुत ही व्यस्त बना दिया है। सुबह उठते ही मोबाइल और रात को सोने तक मोबाइल। ऐसे में इंसान खुद से बात करना ही भूल गया है। पहले लोग अपने परिवार के साथ बैठते थे, अपने मन की बातें साझा करते थे, प्रकृति के बीच समय बिताते थे, लेकिन आज अकेलापन बढ़ता चला जा रहा है। तो सखियों, अपने अंतस या अंतर्मन की आवाज सुनने के लिए आवश्यक है कि हम रोजाना कुछ समय अपने लिए निकालें, कुछ देर शांत बैठें, अपने मन से पूछें, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरे कार्यों से किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा? रोजाना सोने से पहले आपने सुबह से रात तक जो कुछ भी किया उसका चिंतन जरूर करें। जब हम खुद से सवाल करते हैं तो हमारा अंतस हमें सही जवाब देता है। खासकर आज के युवाओं को दिखावे और नकल से दूर रहना चाहिए। अपने दोस्तों की देखा देखी में कैरियर ना चुनकर अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कैरियर चुनना चाहिए। यदि आज के युवा समाज के डर से अपनी पसंद छोड़ देते हैं और अपने अंतस की नहीं सुनते तो वे जीवन में दुखी महसूस करते हैं, जीवन में संतुष्ट नहीं रहते। अतः वही करें जो आपका अंतस कहे, जिसमें आप संतुष्ट रहें और अपने अंतस को मजबूत बनाने के लिए रोज कुछ समय शांत वातावरण में बिताइए, अच्छी किताबें पढ़िए, जरूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, सत्य बोलने की कोशिश करें, क्योंकि जब इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसका अंतस भी शांत रहता है। सखियों, हमारे अंतस की आवाज कभी भी जोर से नहीं बोलती, वह धीरे धीरे हमें रास्ता दिखाती है। इसीलिए हमें मन को शांत रखना चाहिए, तभी हम उसे सुन पाएंगे। तो आप दुनिया की भीड़ में खुद को मत खोइए, दूसरों की सलाह जरूर सुनिए, लेकिन अंतिम निर्णय लेते समय अपने दिल और अंतस की आवाज भी जरूर सुनिए और उसे महत्व भी दीजिए, क्योंकि वही आवाज आपको सही दिशा दिखाती है और जीवन में सच्ची खुशी देती है। तो इस चर्चा के अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि जो व्यक्ति अपने अंतस की सुनता है वही जीवन में सही मायने में खुश और संतुष्ट रहता है। तो सखियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा, आइए करवाते हैं आपका मनोरंजन और मिलकर सुनते हैं एक मधुर गीत।

सखियों, आशा करती हूँ आपको गीत पसंद आया होगा। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। सखियों, आज हम संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं, जो दुनिया में शांति, सुरक्षा और मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। हर वर्ष 29 मई को यह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य उन सैनिकों, पुलिसकर्मियों और नागरिक कर्मचारियों के योगदान को सम्मान देना है, जो संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में सेवा देते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की शुरुआत वर्ष 1948 में हुई थी। तब से लेकर आज तक लाखों शांति सैनिक युद्ध, हिंसा और संकट से प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को सुरक्षित जीवन देने का प्रयास कर चुके हैं। ये सैनिक केवल हथियार लेकर सीमा पर खड़े नहीं होते, बल्कि वे अस्पताल, स्कूल और मानवीय सहायता पहुंचाने जैसे कार्यों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका उद्देश्य केवल संघर्ष रोकना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में भरोसा और शांति स्थापित करना भी होता है। भारत को इस बात पर गर्व है कि वह संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में से एक रहा है। भारतीय सैनिकों ने अफ्रीका, एशिया और दुनिया के अनेक संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में साहस, अनुशासन और मानवता की मिसाल प्रस्तुत की है। अनेक भारतीय सैनिकों ने

पंक्ति स्थापना के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दिया है। उनका त्याग सदैव ध्यान में रखा जाएगा। आज के समय में जब दुनिया कई चुनौतियों जैसे कि आतंकवाद, गृह युद्ध और मानवीय संकट का सामना कर रही है, तब शांति सैनिकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये हमें संदेश देते हैं कि संवाद, सहयोग और मानवता के बल पर हर संघर्ष का समाधान संभव है। तो सखियों, बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। आइए करवाते हैं आपका मनोरंजन और सुनवाते हैं आपको एक मधुर गीत।

सखियों, आशा करती हूँ आपको गीत पसंद आया होगा। आज हम विविधता के अंतर्गत आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो लगभग हर परिवार, हर व्यक्ति और हर निवेशक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वह विषय है भूमि में निवेश के समय रहें सावधान। सखियों, भारत में जमीन को हमेशा से सबसे सुरक्षित और लाभदायक निवेश माना गया है। लोग कहते हैं कि सोना और जमीन कभी बेकार नहीं जाती। यही कारण है कि लोग प्लॉट, खेत और मकान खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं। कोई अपने बच्चों के भविष्य के लिए जमीन खरीदता है तो कोई व्यवसाय या घर बनाने के उद्देश्य से। लेकिन कई बार जल्दबाजी, लालच और अधूरी जानकारी के कारण लोग ठगी और धोखे धड़ी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए भूमि में निवेश करते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि जमीन खरीदना कोई छोटी बात नहीं है। इसमें व्यक्ति की वर्षों की मेहनत की कमाई लगी होती है। यदि थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक तनाव भी झेलना पड़ता है। इसलिए जमीन खरीदने से पहले हर पहलू की अच्छी तरह से जांच कर लेना आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात है जमीन के दस्तावेजों की जांच। कई लोग केवल दिखावे या किसी एजेंट की बातों में आकर जमीन खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता है कि जमीन का मालिक कोई और है या उस जमीन पर कानूनी विवाद चल रहा है। इसीलिए खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि जमीन के सारे दस्तावेज सही और कानूनी रूप से वैध हैं भी या नहीं। खसरा, खतौनी, जमाबंदी, रजिस्ट्री और नामांतरण जैसे कागजात अच्छी तरह से जांच लें। यदि आपको इनकी जानकारी नहीं है तो किसी अनुभवी वकील या कानूनी सलाहकार की मदद जरूर लें। सखियों, दूसरी जरूरी बात है जमीन का सही स्थान। केवल कम कीमत देखकर जमीन नहीं खरीदनी चाहिए। यह देखना भी जरूरी है कि वह क्षेत्र भविष्य में कभी विकसित होगा भी या नहीं। वहां सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। कई बार हम सस्ती जमीन खरीद लेते हैं लेकिन वर्षों तक वहां कोई विकास नहीं होता और उनका पैसा फंस जाता है। इसीलिए निवेश हमेशा ऐसी जगह करें जहां भविष्य में विकास और मूल्य बढ़ने की संभावना हो। सखियों, आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है। मोबाइल पर कई आकर्षक विज्ञापन दिखाई देते हैं जिनमें बहुत कम कीमत में शानदार फ्लैट्स या प्लॉट्स देने का दावा किया जाता है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कई कंपनियां जो कि फर्जी हैं, वे लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाकर ठगी कर रही हैं। इसीलिए किसी भी विज्ञापन पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। पहले जमीन को खुद जाकर देखें, आसपास के लोगों से जानकारी लें और सरकारी रिकॉर्ड में उसकी जांच करें। इसके अलावा यह जानना भी जरूरी है कि जमीन पर कोई बैंक लोन या कानूनी रोक तो नहीं लगी। कई बार जमीन गिरवी रखी होती है और खरीदार को इसकी जानकारी नहीं होती। बाद में उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तहसील, नगर निगम या संबंधित सरकारी विभाग से पूरी जानकारी

लेना बहुत ही आवश्यक है। सखियों, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि भूमि और आवासीय भूमि में अंतर। बहुत से लोग खेती की जमीन या एग्रीकल्चर लैंड खरीद लेते हैं, बाद में वहां मकान बनाने की योजना बनाते हैं, लेकिन हर एग्रीकल्चर लैंड या कृषि भूमि पर मकान बनाने की अनुमति नहीं होती। इसलिए पहले ही यह सुनिश्चित कर लें कि जमीन का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो आवासीय भूमि ही खरीदें। इसके साथ में निवेश करते समय भावनाओं पर नहीं बल्कि समझदारी पर भरोसा करें। कई बार एजेंट या विक्रेता आज ही फैसला ले लें, अन्यथा कल की कीमत बढ़ जाएगी। ऐसी बातों में आकर जल्दबाजी ना करें। सही निवेश वही होता है जहां धैर्य और पूरी जानकारी हो। इसी प्रकार सखियों, भुगतान के समय भी सावधानी जरूरी है। हमेशा बैंक के माध्यम से लेन देन करें, उसकी रसीद सुरक्षित रखें। नगद भुगतान भविष्य में विवाद का कारण बन सकता है। साथ ही जमीनी रजिस्ट्री हमेशा सरकारी कार्यालय में जाकर

अभी हमारी बहनें सुन रही थी कार्यक्रम महिला जगत, आकाशवाणी अलवर का। ये सर इसका चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी दोस्त रिचा मीना एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम। दोस्तों, दूसरों को जानना ज्ञान है, लेकिन स्वयं को जानना सच्ची बुद्धिमानी है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की सफलता देखकर सोचा हो, यार इसके पास तो सब कुछ है और मेरे पास नहीं? या फिर किसी की तस्वीर, किसी की नौकरी, किसी के रिश्ते को देखकर अपने जीवन को कमतर आंका हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो केवल आप अकेले नहीं हैं, हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी इस जाल में फंसे जाते हैं। लेकिन दोस्तों सोचिए, जब हम अपना समय दूसरों का मूल्यांकन करने में बिताते हैं, तो क्या हम वास्तव में खुद को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं? दोस्तों, खुशी का रास्ता तुलना से नहीं, आत्म मूल्यांकन से होकर गुजरता है। जब हम खुद से पूछते हैं, मैं कल से कितना बेहतर हूँ, मेरी कौन सी आदत मुझे आगे बढ़ा सकती है, मुझे किन कमियों पर काम करना है, तब हमारा ध्यान दूसरों की कमियों या उपलब्धियों से हटकर अपनी प्रगति पर आ जाता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि एक छात्र हमेशा यह देखता रहे कि उसके दोस्त के कितने नंबर आए हैं, तो वह कभी भी अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर वह यह देखे कि पिछली बार की तुलना में उसने कितना सुधार किया, तो हर परीक्षा उसके लिए एक नई सफलता बन जाएगी। दोस्तों, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी की कहानी का पहला चैप्टर देखकर अपनी कहानी का 10वां चैप्टर मत लिखिए, क्योंकि जो आपको आज किसी की सफलता दिखाई दे रही है, उसके पीछे कितनी मेहनत, कितने संघर्ष, कितनी असफलताएं और कितनी जागी हुई रातें रही होंगी, यह हमें अक्सर दिखाई नहीं देता। हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ वह हिस्सा देखते हैं जो दुनिया को दिखाया जाता है। ऐसे में उनसे कंपैरिजन करना बिल्कुल अनबायस्ड हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, अपनी नजर दूसरों की उपलब्धियों पर नहीं, अपनी संभावनाओं पर रखिए। दूसरों से मोटिवेशन लीजिए, लेकिन अपनी तुलना उनसे मत कीजिए, क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां सबको एक ही समय पर फिनिश लाइन पार करनी है। जीवन तो एक जर्नी है, और इस जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर कोई उस रास्ते तक जा सकता है जहां वह जाना चाहता है। आप कल जहां थे, आज उससे कितना आगे बढ़े, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों विविधा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्वास्थ्य की। दोस्तों परंपराएं सिर्फ हमारी संस्कृति नहीं होती, कई बार उनके पीछे छिपा होता है विज्ञान का गहरा राज। आपने जरूर कभी ना कभी सोचा होगा कि दक्षिण भारत में अक्सर केले के पत्ते पर खाना क्यों खाते हैं। क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई खास वजह भी है? दोस्तों जब हम साउथ इंडियन शादी त्योहार या मंदिर में जाते हैं तो केले के बड़े बड़े हरे पत्तों पर भोजन परोसा जाता है। देखने में तो यह सुंदर लगता ही है, लेकिन इसके पीछे कई दिलचस्प कारण भी छिपे हैं। सबसे पहले तो केले के पत्ते नेचुरली

हाइजीनिक माने जाते हैं। इन्हें बस पानी से धोकर इस्तेमाल किया जा सकता है और इनमें किसी तरीके केमिकल या डिटर्जेंट की जरूरत नहीं होती। अब जरा सोचिए, जब गर्मा गर्म सांभर, चावल या डोसा केले के पत्ते पर परोसा जाता है तो पत्ते की एक नेचुरल लेयर खाने के साथ मिल जाती है, जिससे खाने का टेस्ट और सुगंध दोनों ही बढ़ जाते हैं। और सिर्फ स्वाद ही नहीं, केले के पत्तों में एंटी बैक्टीरियल गुण और पॉलीफेनॉल जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये नेचर के लिए सम्मान भी सिखाता है। ये नेचर के लिए सम्मान भी सिखाता है, क्योंकि हम प्लास्टिक और डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज करते हैं, जिनका यूज हम ज्यादा कर रहे हैं, वो इको फ्रेंडली नहीं होते। वहीं केले के पत्ते इको फ्रेंडली भी होते हैं, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। चलिए दोस्तों, इसी के साथ सुनवाते हैं आपको एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों विविधा में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेल की। दोस्तों हौसलों की उड़ान तब और ऊंची हो जाती है जब हालात पंख काटने की कोशिश करें। दोस्तों भारत के स्टार पैरा एथलीट और दो बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंटिल ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। उन्होंने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की F64 जेवलिन थ्रो स्पर्धा में 74.82 मीटर का विशाल थ्रो कर अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जरा सोचिए, किसी और का नहीं बल्कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देना, यानी दुनिया से नहीं खुद से ही आगे निकलने की लड़ाई, और शायद यही असली सफलता भी है। लेकिन दोस्तों इस उपलब्धि के पीछे एक लंबा संघर्ष छिपा है। एक समय था जब सुमित का सपना पहलवान बनने का था, लेकिन एक सड़क दुर्घटना में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया। बहुत से लोग शायद इस मोड़ पर अपने सपने छोड़ देते हैं, लेकिन सुमित ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया और जेवलिन को अपना नया लक्ष्य बना लिया, और वही खिलाड़ी दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरा जेवलिन थ्रोअर्स में गिना जाता है। सबसे मोटिवेशनल बात यह है कि रिकॉर्ड बनाने के बाद भी सुमित ने कहा कि वे इससे भी बेहतर करना चाहते हैं और आने वाले एशियन पैरा गेम्स में और बड़ी दूर तक भाला फेंकने का लक्ष्य रखते हैं। दोस्तों कई बार हम जीवन में छोटी सी असफलता से निराश हो जाते हैं, हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन सुमित की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी सिचुएशन कितनी भी खराब हो, कितनी भी कठिन हो, अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान अपनी सीमाओं को भी पीछे छोड़ सकता है। चलिए सुनते हैं इसी के साथ और एक प्यारा सा गीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों जाते जाते आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी। हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम इस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसीलिए दोस्तों एक टाइम टेबल बनाना और उसे फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। टाइम टेबल हमें दिन का हर एक पल प्रोडक्टिव बनाने में मदद करता है। जब हमारे पास एक फिक्स प्लान होता है तो हम अपने गोल्स पर बहुत ज्यादा फोकस्ड रह पाते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। सबसे बड़ी बात, टाइम टेबल हमें सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन देता है, जिससे हम मन लगाकर अपना काम कर सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। आजकल हम सोशल मीडिया और दूसरी जगह पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, रील्स स्क्रॉल करने में ही लगे रहते हैं, लेकिन एक वेल प्लान्ड शेड्यूल से हम अपने समय को ज्यादा उपयोगी बना पाएंगे। और जब आप रेगुलर अपना टाइम टेबल, अपना प्लान फॉलो करते हैं तो सफलता दूर नहीं होती। इसीलिए दोस्तों टाइम टेबल सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि सपनों को पूरा करने का एक रोड मैप भी हो सकता है। इसीलिए आप भी एक टाइम टेबल बनाएं और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ऐसा ना हो कि टाइम टेबल सिर्फ दीवार पर चिपका रह जाए।

अभी हमारे युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युवाणी आकाशवाणी अलवर का। ये सर इसका चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और घुसपैठ पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंध में संरचनात्मक परिवर्तन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत नागरिकों, प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सीमा सुरक्षा बल तथा सेना के सहयोग से पूर्ण क्षेत्रीय सुरक्षा का प्रबंध किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनः परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
1: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने रीनीट की घोषणा किया है, वो रीनीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: श्री प्रधान ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि CBI इस मामले की पूरी जाँच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुविधा नीट एडमिट कार्ड दिखाना होगा। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की महाशक्ति और अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य प्रत्येक नागरिक को सशक्त के बिना हासिल नहीं हो सकता। असम के गुवाहाटी में कार्यक्रम में उन्होंने राज्य और राष्ट्र की मजबूती के लिए ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाए जाने पर बल दिया। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि यह अकादमी 5 मुख्य क्षेत्रों पर काम करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की घुसपैठ

0: और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हिलाइंग कल से 3 जून तक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा होगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है FM 103.1 MHz पर। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी देते हैं हमारे आज शाम प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

आज शाम 6:10 पर हम आपको सुनवाएंगे फिल्म संगीत। 6:30 हिंदी में और उसके बाद राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 7:00 कार्यक्रम ग्राम भारती में आज चर्चा का विषय रहेगा अनार की उन्नत बागवानी। एक भेंटवार्ता हम अपने किसान भाइयों को सुनवाएंगे, अमरूद की उन्नत बागवानी। वार्ताकार होंगे श्री विकास कुमार सैनी, कृषि पर्यवेक्षक महुआ खुर्द। साथ ही जानकारी दी जाएगी पपीता की उन्नत बागवानी और होगा बाजार भाव और मौसम की जानकारी।

शाम 7:30 बजे आप आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। 8:15 बजे लोक संगीत का कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सीमा मिश्रा और साथियों के गाए लोकगीत।

9:45 समाचार संध्या हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:00 अंग्रेजी में समाचार भी आप दिल्ली केंद्र से ही सुन सकेंगे। 9:15 विविध भारती के कार्यक्रम हम मुंबई से रिले करेंगे।

रात्रि 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। श्रोताओं, ये थी हमारी आज शाम प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश आए जाने के तुरंत बाद को या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आज नीट पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं को लेकर भी सुनवाई की। न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने कहा कि इस मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पुनर्परीक्षा उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी। डीडी न्यूज के साथ एक साक्षात्कार में छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने आश्वस्त किया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है। उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे। उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत अब तक 40

0: लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल ने कहा है कि भारत को 2047 तक विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निचले स्तर पर प्रत्येक नागरिक को सशक्त किए बिना हासिल नहीं हो सकता है। आज गुवाहाटी में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने ग्राम स्तर पर नागरिकों को सशक्त बनाने पर जोर दिया। श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों जीवन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि गांवों में हर व्यक्ति तक सुशासन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में साझा सेवा केंद्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यशाला में राजस्थान सहित 7 राज्यों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। राज्यसभा की द्विवार्षिक चुनाव की प्रक्रिया 1 जून से शुरू होगी। राजस्थान में राज्यसभा के 3 सदस्यों का निर्वाचन होना है। नाम निर्देशन 8 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि नामांकन पत्रों की जांच 9 जून को की जाएगी। 11 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मतदान होने की स्थिति में 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसी दिन शाम 5 बजे मतगणना होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सभी जिलों को इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 89 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं। इनमें से 96% पेंशन धारकों का सत्यापन हो चुका है। बैठक में विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीमों ने आज अजमेर और नीमराना क्षेत्र में एक साथ कार्रवाई करते हुए कुछ स्थानों पर छापेमारी की। सुबह से शुरू हुई इस कार्रवाई में केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बल भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई संदिग्ध गतिविधियों और कुछ लोगों के आपराधिक नेटवर्क से जुड़े इनपुट के आधार पर की गई। NIA की अलग अलग टीमों ने अजमेर शहर और नीमराना के कुछ इलाकों में संदिग्ध ठिकानों पर दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और अन्य सामग्री की जांच की। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। हालांकि एजेंसी की ओर से आधिकारिक तौर पर मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जल और पर्यावरण संरक्षण को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के निंदड़ में जल संरक्षण कार्यों में श्रमदान किया। इस अवसर पर उन्होंने वन विभाग की ओर से आयोजित इको ट्रेल ट्रेक का भी उद्घाटन किया। वन मंत्री संजय शर्मा भी वहां मौजूद रहे। सवाईमाधोपुर जिले की अमरगढ़ ग्राम पंचायत में कलश यात्रा, पीपल पूजन और पौधरोपण गतिविधियों के साथ पक्षियों के लिए परिंडे लगाए गए। जैसलमेर की भणियाणा पंचायत समिति में पारंपरिक संस्कृति और धार्मिक आस्था के अनुरूप पीपल पूजन किया गया। ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र के बिलावड़ी जोहड़ में श्रमदान कर जल संरक्षण का संदेश दिया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर अरुण गर्ग ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक कर उनकी सहभागिता बढ़ाना है।
1: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। इसमें मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी, लेकिन ये बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन

0: श्वास आने वाले समय में पानी समस्या का स्थायी समाधान होगा।
1: अभियान के तहत सिरोही में CSR कार्यशाला रखी गई। इसमें अभियान के उद्देश्यों, जल संरक्षण गतिविधियों और जन भागीदारी को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। चूरू और पाली सहित अन्य जिलों में भी जल चौपाल, स्वच्छता अभियान, तालाबों और जोहड़ों की साफ सफाई और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश में आंधी बारिश की गतिविधियों से लोगों को सूरज की तपिश से राहत मिली है। कई जिलों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जैसलमेर और फलौदी में आज भी तेज गर्मी का असर रहा। अन्य जिलों में दिन के समय तेज धूप रही, लेकिन दोपहर बाद कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर ने आज से आंधी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर तथा कोटा संभागों में कुछ स्थानों पर तेज अंधड़, हल्की से मध्यम बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कई उत्तरी पूर्वी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कल भी राज्य के ज्यादातर जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं।
2: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से आंधी, अंधड़ और इसके साथ में कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात होने की भी संभावना है। आंधी बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने का आज अंतिम दिन है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के सभी उच्च न्यायालयों को सुरक्षित रखे गए फैसलों को 3 महीने के भीतर सुनाने के निर्देश दिए। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब तक देश भर में 40 लाख मकानों की छत पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। प्रदेश में सत्यापन से वंचित पेंशन धारकों का आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सत्यापन करवाया जाएगा। और राज्य में आंधी बारिश की गतिविधियों से लू और तपिश से मामूली राहत, आज और कल अधिकतर स्थानों पर आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से जैसलमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख मनीष व्यास ने तैयार किया है। जैसलमेर के इकोसिस्टम का गौरव और राज्य पक्षी गोडावन के संरक्षण में जिले को खास उपलब्धि हासिल हुई है। आधुनिक तकनीक की मदद से गोडावन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जिले का सुदासरी गोडावन संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा रामदेवरा में भी गोडावन का आधुनिक प्रजनन केंद्र चलाया जा रहा है, जिससे इनकी संख्या 80 के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावन संरक्षण के प्रयासों की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि कभी गोडावन राजस्थानी इलाकों की पहचान हुआ करता था, किंतु एक समय में इनकी संख्या बहुत कम हो गई और ये पक्षी विलुप्ति की कगार पर पहुंच गए। अब इनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। आपको यह भी बता दें कि 21 मई को गोडावन दिवस मनाया गया। इसे लेकर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में विभिन्न आयोजन हुए। वन मंत्री संजय शर्मा ने डेजर्ट नेशनल पार्क के सुदासरी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने गोडावन प्रतिमाओं का भी अनावरण किया। जैसलमेर जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। यहाँ दिन का तापमान 46 डिग्री के पार पहुँच गया। सूरज की तपिश और गर्म हवाओं के झोंके लोगों को परेशान कर रहे हैं। झुलसाती गर्मी के कारण पर्यटन व्यवसाय भी थमासा नजर आ रहा है। जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल की ओर से लोगों से खास ध्यान रखने की अपील की जा रही है। साथ ही विभिन्न संस्थाओं की ओर से जिले में परिंडे लगाए जा रहे हैं। सरहदों पर देश की सुरक्षा में जुटे सीमा प्रहरी अंगारे बरसाती गर्मी में

0: جنسی نوج بناون یا من ہٹاون رو حکم دیون اروانی ٹھوڑ ایک مضبوط ارسوائت نکائے بناون ری مانگ کری چی ہی ای معاملہ مائے آگلی سنوائی جولائی مہینہ را دوجا سپتاہ مائے کری چا ویلا کیندری شکشا منتری دھرمیندر پردھان میڈیکل کالجا مائے داخلہ سارو او جو لی جاون والی نیٹ پریکشا ویوستھت طریقوں بنا غلطی کراون رو بھروسو دلایو ہے दूरदर्शन समाचार सागे बातचीत रे दौरान श्री प्रधान भरोसो दिरायो के सरकार पीछे इम्तियान बिना गलती करावन सारू जरूरी सगला जतन करया जा रहा है।
1: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: पीएम सूर्य घर योजना रा तहत देश में हाल तक 40 लाख मकान रे छत माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीन लगाती रिची है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी आज सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए आ जानकारी दीनी। वह कहो के आ योजना जनता ने बिजली रा ग्राहक री बजाय बिजली पैदा करण वाला बना रही है। राज्यसभा रा द्विवार्षिक चुनाव री प्रक्रिया 1 जून न शुरू भेला। प्रदेश में राज्यसभा रा 3 सदस्यों रो चुनाव करियो जावणो है। इसारू नाम पाना 8 जून तक दाखिल करया जा सकेला। चुनाव अधिकारी भारत भूषण शर्मा बतायो के दाखिल करीचिया नाम पाना री जांच 9 जून न करी जावेला। पर्चा 11 जून ताई पाछा लिया जा सकेला। जरूरत पड़िया 18 जून न सवारे 9 सिंजा 4 बजा ताई वोट पड़ेला और वही दिन सिंजा 5 बजाऊं वोटा री गिनती करी जावेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास आज जयपुर माए पचपदरा रिफाइनरी रा कामारी प्रगति रो जायजो लीनो। HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड रा आला अहलकारा सागे भी मीटिंग माए कंपनियां रा नुमाइंदा बतायो के 1 जून कमिशनिंग रा काम शुरू कर दिया चावेला। ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश माए पेंशन लेवन वाला ज्या लोगों रो हाल ताई सत्यापन नहीं करायो जा सक्यो है, वारो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो जावेला। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत आज जयपुर माए न्यारी न्यारी योजना वारा काम रो जायजो लेवन सारू अहलकारा सागे राखी जी मीटिंग माए ए हुकम दीना। वे कहो के राज्य माए करीब 89 लाख लोगों ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जहाँ मायू 96% रो सत्यापन कर लियो चियो है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA री टीमा आज अजमेर और नीमराना हलका माए कुछ थोड़ा छापा मारिया। NIA री न्यारी न्यारी टीमा अजमेर शहर और नीमराना रा कुछ हलका माए शंका वाली थोड़ा कागजात इलेक्ट्रॉनिक और दूजी सामग्री री जांच कीनी और जरूरी पूछताछ करी जी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 रा तहत राज्य रा न्यारा न्यारा जिला माए पानी और आबो हवा ने बचावन सारू मोटा पैमाना माथे जाग जगावन रा कार्यक्रम रख्या जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर के नींदड़ माए पानी बचावन रा कामा रा तहत श्रमदान कीनो। ई मौके वे वन विभाग री ओर इको ट्रेल ट्रैक रो उद्घाटन कीनो। कार्यक्रम माए वन मंत्री संजय शर्मा ही मौजूद हा। सवाई माधोपुर जिला री अमरगढ़ ग्राम पंचायत माए कलश यात्रा पीपल पूजन और पौधारोपण सागे परिंदा सारू परिंडा बांधी जिया। जैसलमेर जिला री भणियाणा पंचायत समिति माए पीपल पूजन करी जियो और महिलावां मंगल गीतां सागे कलश यात्रा निकाली। झुंझुनू जिला रा चिड़ावा हलकारा बिलावड़ी जोहड़ माए श्रमदान कर पानी बचावन रो संदेश दियो चियो। ई मौके जिला कलेक्टर अरुण गर्ग कहो के ई अभियान रो मकसद जनता माए पानी और पर्यावरण ने बचावन सारू जाग जगावन सागे वारी भागीदारी बधावनु है।
2: वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 25 तारीख से 5 जून तक जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे

0: बड़ी खुशी है कि बहुत ही अच्छे माहौल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके बारे में और बेहतर स्थितियां होगी, लोग इससे जुड़ेंगे। मेन समस्या पानी की बताई गई है, पानी लेकिन ये बताया ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं है, तो जो पुराने जो रिसोर्सेज थे उसको कैसे रिचार्ज कर सकते हैं, इस बारे में बात करके प्रयास करेंगे कि जो इतनी मेहनत से लोगों ने पेड़ लगाए हैं उन पेड़ों को बचाया जाए। समय लगेगा लेकिन मुझे विश्वास आने वाले समय में पानी की समस्या का स्थायी समाधान होगा।
1: अभियान रत सिरोही माए CSR कार्यशाला राखी ची इन माए अभियान रा मकसद पानी बचावन जुड़िया काम और जनतारी भागीदारी रबारा माए विगतवार चर्चा करी ची।

0: अभियान रा तहत सिरोही माए CSR कार्यशाला राखी ची। इन माए अभियान रा मकसद पानी बचावन जुड़िया काम और जनतारी भागीदारी रे बारा माए विगतवार चर्चा करी ची। चूरू और पाली समेत न्यारा न्यारा जिला माए जल चौपाल साफ सफाई रा अभियान तलावा और जोहड़ा नी साफ सफाई और पानी बचावन रे शपथ दिरावन रा कार्यक्रम राखी चिया। अरब मौसम प्रदेश रा न्यारा न्यारा हल्का माए आंधी बारिश रे कारण पारो थोड़ो उतरणु तपन कम भी है। दोपहर पाछे कई हल्का माए तेज हवा चालन आंधी आवन और कठे कठे हल्की बारिश रा समाचार है। इन बीच जैसलमेर और फलौदी समेत कई जिला माए आज ही तेज तावड़ो पड़ियो। मौसम केंद्र जयपुर आज आंधी बारिश जुड़ी हलचल माए बढ़ोतरी भेवन सागे बीकानेर माए कठे कठे तेज अंधड़ और बिरखा सागे कुछ जगह ओला पड़बार आसार जताया है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधे श्याम शर्मा बतायो के काली राज्य रा घनखर हल्का माए आंधी बारिश रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार है।
1: एक नया पश्चिम विक्षोभ राज्य के कुछ भागों में पिछले 24 घंटों में सक्रिय हुआ है। इसके असर से अगले 2-3 दिन विशेष रूप से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज गर्जन, तेज आंधी, अंधड़ और इसके साथ कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान इलाकों में मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक की भी दर्ज की जा सकती है। बारिश के असर से आगामी 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और ज्यादातर इलाकों से हीट वेव से राहत मिलने की संभावना।
0: केंद्र सरकार सोशल मीडिया में से चल रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा वां वीडियो ने गलत बतायो है, जिनमें इटली री प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जुड़िया मनगढ़ंत दावा और ईरान अमेरिका बीच मध्यस्थता रा बारा में टिप्पणियां शामिल है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई रे मुजब डिजिटल रूप बदली जिया वीडियो ने AI बनाई चियो है। PIB री फैक्ट चेक इकाई रे मुजब श्री मोदी एडो कोई बयान नहीं दिनो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 31 मई ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज संसद भवन परिसर माए संसदीय कार्य मंत्रालय री हिंदी सलाहकार समिति री मीटिंग लीनी। इन दौरान सांसदा, विधायका और आला अहलकारा सागे सरकारी कामकाज माए हिंदी ने असरदार तरीकाओं काम लेवन रबारा माए चर्चा करी ची। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह मिशन मौसम रातेत मौसम और कोहरारी निगरानी सारू देश री पहली एकीकृत विमानन प्रणाली स्काई कास्ट रो आज नई दिल्ली रा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माथे उद्घाटन किन्नो। ई मौके वे कहियो के ई नुआ सिस्टम रो मकसद हवाई अड्डा माथे मौसम री निगरानी और कोहरा रो सटीक अनुमान लगावण ने और मजबूत बनावणु है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल कहो है कि भारत ने साल 2047 ताई दुनिया री अगाड़ी माली व्यवस्था मनावन रो लक्ष्य नीचला लेवल माथे हर नागरिक ने मजबूत करिया बगैर हासिल नहीं करियो जा सके है। वे आज गुवाहाटी माए पंचायती राज मंत्रालय का न्यू सेवा से समृद्धि क्षेत्रीय कार्यशाला रा उद्घाटन सत्र माए बोल रहा है। वे ग्राम लेवल माथे जनता ने मजबूत बनावण माथे जोर दिनो। श्री बघेल गांवाई हलका माए लोगां री जिंदगी आसान बनावण सारू हर एक जना ताई सार्वजनिक सेवावां री पूर्ति तय करण बाबत कहो। वे कहो के गांवां माए हर एक जना ताई सुशासन और न्यारी न्यारी सरकारी योजनावां रो फायदो पुगावण माए साझा सेवा केंद्र खास भूमिका निभाई है। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ली रहो। सुप्रीम कोर्ट देश री सगली हाई कोर्टा ने सुरक्षित राखी जिया फैसला 3 महीना री मियाद माए सुनावन रा हुकम दीना। PM सूर्य घर योजना रा तेत हाल ताई देश रा 40 लाख घरा री छता माथे सूरज री रोशनी बिजली बनावन री मशीना लगाई ची। प्रदेश में आए

0: सत्यापन नी करा सक्या पेंशन लेवन वाला रो आवता 15 दिन माए सत्यापन करायो चावेला। अर राज्य रा कुछ हल्का माए आंधी बारिशों लू अर तपन थोड़ो आराम मिलियो। आज अर काल घनखर थोड़ा आंधी बारिश अर ओला पड़बा सारू चेताईचियो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम ग्राम भारती।

ग्राम भारती कार्यक्रम सुन वाला सभी किसान भाई बहनों को विश्राम भाई की ओर से घनी घनी राम राम। किसान भाइयों, आज चौपाल में चर्चा करें अनार की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, जैसा कि भूमि का जो जल स्तर है वो दिनों दिन नीचे जा रहा है, और ऐसे में हम जो पारंपरिक खेती जो अपन करते हैं अनाज की, वो करते आ रहे हैं, वो करने में अपन को दिक्कत आ रही है। तो ऐसे समय में हमको बागवानी की तरफ रुख जरूर करना पड़ेगा। तो आइए आज अपन चर्चा करते हैं बागवानी की मुख्य फसल अनार की खेती। अपने यहाँ यानी कि अलवर ज़िले में अनार की खेती किसान भाइयों बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। इसके लिए जलवायु और भूमि का जो अपने देखते हैं भाई कैसी होनी चाहिए, तो जलवायु शुष्क और भूमि है वो दोमट है, वो बहुत ही अच्छी होती है जो कि अपने यहाँ पर पाई जाती है। जलवायु की अपन बात करें तो देखिए, सूखा सहन करने की अत्यधिक क्षमता या फसल में होती है। फल विकास के समय की जो नमी की अपन इसको ज़रूरत पड़ती है वो बहुत कम पड़ती है, तो वो अपने यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा ठंडक तथा दिन में प्रकाश सहन करने के लिए या जो अनार की खेती है ये बहुत ही अच्छी है। ऐसी परिस्थितियों में दानों का जो रंग है वो गहरा लाल, स्वाद मीठा होता है। वातावरण के अनुसार इसमें बहुत ही अच्छी पैदावार भी हो जाती है। पैदावार के लिए जल निकास वाली भूमि है वो होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर यानी कि अलवर ज़िले में जो गहरी भारी दोमट मिट्टी है वो ज़्यादातर पाई जाती है, जिसका पीएच मान 5 से 7.5 डिग्री तक यहाँ पर मिलता है। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई जलवायु और मिट्टी के बारे में, अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। किसान भाइयों, अनार की उन्नत किस्मों में भगुआ है। भगुआ किस्म को सेंदारी, सिंदूरी या एष्टागंधा, गंधा, मस्तानी इन नामों से भी जाना जाता है। अपने देश में इसको एक व्यापारिक फसल के रूप में भी बहुत ही अच्छी किस्म को हम काम लेते हैं, क्योंकि इसके फल का जो छिलका है वो हल्का मोटा होता है, और इसके फलों का जो वजन की बात करें तो वो 200 से 400 ग्राम का होता है। किसान भाइयों, इसमें फल फटने की जैसी कोई समस्या है वो बहुत ही नहीं के बराबर होती है, यानी बहुत कम फटते हैं, नहीं फटते नहीं हैं। इसकी जो किस्म की बात करें तो फलों की विदेशों में बहुत ही अच्छी मांग होती है। इस प्रकार से इसकी जो औसत हम उपज की बात करें तो देखिए 891.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की इसकी पैदावार भी बहुत हो जाती है। इसके अलावा गणेश किस्म है अनार की, यह किस्म बहुत ही पुरानी और प्रचलित फसलों में हम गिनते हैं, जबकि दक्षिण भारत आज भी बहुत ही प्रचलित मात्रा में यानी कि प्रचुर मात्रा में इसको बोते हैं। इसके बीज नरम और लाल रंग के होते हैं। किसान भाइयों, इसके अनार के जो बीज हैं वे बहुत ही रसीले, मीठा और नरम होते हैं। तो गणेश की जो किस्म है उसका जो वजन की फलों के वजन की बात करें तो 150 से 200 ग्राम प्रति फल के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये फल है गणेश की जो किस्म है इसके बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा मृदुला

किस्म है वो भी बहुत अच्छी होती है। जालौर सीडलेस किस्म है वो भी बहुत अच्छी है। जोधपुर रेड किस्म है वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा और अन्य किस्में हैं, जैसे कंधारी है, अरकत्ता है, ज्योति है, मस्कट रेड है, ढोलक है, यानी कि G137। तो ये कई किस्में इसमें काम आती हैं। तो किसान भाई, अब बात आती है कि इसके जो पौधे हैं उसकी अपन किस तरह से लगाएं, किस तरह से उनकी हम छटाई करें। तो इसके लिए किसान भाइयों, देखिए कलम को IBA 1000 PPM के घोल बना करके डुबो करके लगाने में अच्छी सफलता मिलती है, क्योंकि इससे पौधे हैं जो जल्दी ही फुटान कर जाते हैं। कटिंग लगाने के लिए फरवरी माह उसको उपयुक्त माना जाता है। पौधे लगाने की विधि है, पौध लगाने का जो अच्छा समय है उसकी अपन बात करें तो देखिए वो वर्षा काल का समय होता है, यानी अपने जो आषाढ़ और श्रावण का महीना होता है उसमें ज़्यादातर पौधे लगाते हैं। परंतु सिंचाई का समुचित प्रबंध है तो किसान भाइयों, अनार के जो पौधे हैं वो फरवरी मार्च में भी लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं पौधे लगाने के लिए एक माह पहले 3x4 मीटर, यानी कि 3 से 4 मीटर की दूरी हो, और 4x5 मीटर और 5x5 मीटर की दूरी पर इनके जो पौधे हैं उनकी हम कतार से कतार की दूरी बना करके और गड्ढे खोदें। इसके बाद 10 से 15 दिन खुला छोड़ दें। उसके बाद ऊपर की जो मिट्टी है उसका दो भाग अच्छी तरह से सड़ी हुई 20 से 25 किलो गोबर की खाद लें। 1 किलो नीम का जो अपन खड़ बोलते हैं उसको लें। 250 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट लें, 250 ग्राम इसमें पोटास ले लें, 50 से 100 ग्राम क्यूनाल फोस लें, 1.5% चूर्ण, 5% बावस्टिन 5 ग्राम लें, ब्लीचिंग पाउडर 25 ग्राम इस तरह से ये मिला करके और मिट्टी में ढंग से मिला करके दोबारा से अपने जो गड्ढे हैं उनको भर दें। तो इस तरह से हम गड्ढों को भर दें। जैसे ही अपना जो वर्षा काल का समय शुरू होगा तो उस समय हम पौधरोपण कर सकते हैं, यानी कि पौधे लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं भाई निराई गुड़ाई है, तो देखो जैसे ही पौधे लगाते हैं उसके आसपास में कोई भी खरपतवार उग जाती है तो उसको अपने खुरपी के अनुसार, यानी खुरपी से या फावड़े से तुरंत दूर हटा दें। इसके अलावा हम बात करते हैं उर्वरकों की, जैसे कि मान लो देशी खाद है या फिर यूरिया है या सुपर फास्फेट है। इसमें किसान भाइयों, वर्ष जैसे वर्ष होता है भाई, देखिए जैसे एक वर्ष का पौधा है उसमें हम गोबर की खाद का उपयोग करें तो 8 से 10 किलो गोबर की खाद ले लें, 10 किलो यूरिया लें और 25 किलो फॉस्फेट लें और म्यूरेट ऑफ पोटास वो 50 किलो लें। ये मिट्टी में मिला करके गड्ढों में भरना है, ये नहीं भाई किसी एक पौधे में दे दें। तो इस तरह से हम वर्षा, जैसे वर्ष होता है एक वर्ष का ले लिया, इसी तरह दूसरे वर्ष में भी हम गोबर की खाद की बात करें तो 16 से 20 किलो लें, यूरिया 20 किलो, सुपर फास्फेट 50 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटास 100 किलो। ये प्रति हेक्टर की बात हो रही है, न कि एक पौधे और गड्ढे की बात हो रही है। तो प्रत्येक हेक्टेयर में ये पूरा खाद मिला करके पूरे गड्ढे जो हम बनाते हैं उसमें डालते हैं ये। अब बात करते हैं, जैसे मान लो पौधे लगा दिए उसके बाद उनकी देखभाल करें, उसमें किस तरह से अपन को देसी खाद, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास ये डालने हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, मात्रा हमको बढ़ानी है। जैसा कि कई बार हम देखते हैं कि भाई छोटी छोटी रूपों में हमने बना लिया, उसका जो मात्रा है वो हमने बना ली, उसमें ही हम इसको काम लेंगे। जैसे हमने कई बार देखा है कि किसान भाइयों को भाई खाद डाल दिया, खाद डालने के बाद उसमें हमको पौधे जैसे ही हमको देखें कि भाई पौधे में कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसकी देखभाल करें हम। अब बात आती है इनमें अंतरा सस्य क्रियाएँ। आरंभ के 3 वर्षों तक बगीचे में कुष्मांड कुल की जो सब्जियां अपन बोते हैं कि भाई फसलें हैं वो बो दें, जैसे कि मटर है, ग्वार है, चौला है, हरी प्याज है या पालक है या धनिया है, अना और इसके अलावा जैसे कुष्मांड कुल में घिया है, तुरई है और कई तरह के जो बेल वाली फसलें उनको बो दें। इसके अलावा गाजर, मूली, इस तरह

0: की भी सब्जी हम उसमें बो सकते हैं, क्योंकि 3 साल तक ये पौधे हैं जो विकास नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, उनकी हमको देखभाल करने के लिए सबसे पहले इस तरह से लगाएं कि भाई सब्जियां भी होती रहें और पेड़ हमारे पेड़ हैं वो भी आगे वृद्धि करते रहें। इसके बाद ध्यान दें कि भाई कोई समस्या तो इसमें देखने को नहीं मिल रही है, तो समय समय पर उसकी हम देखभाल भी करते रहेंगे। तो किसान भाइयों, देखिए चर्चा जारी रहेगी, सुनते हैं ये संदेश।
1: ईएसआईसी हर कदम पर साथ निभाए, सुख हो या संकट की घड़ी, ईएसआईसी साथ है हर घड़ी।
2: 1952 से आज तक ईएसआईसी बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
1: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
2: ईएसआईसी 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।
0: तो किसान भाइयों, देखिए जैसे ही पौधा लग जाता है, अनार के पौधे हमको देखने हैं, उसमें हमको ये देखना है कि भाई कोई पौधा जा तो नहीं रहा है, उसकी हम बार बार देखभाल करते रहें, निराई गुड़ाई करते रहें। निराई गुड़ाई के बाद हमको ये ध्यान रखना है कि भाई कोई पौधा है उसमें जो फल शुरू हो गए, तो फल शुरू होने से पहले हमको सिंचाई बंद करनी है। और सर्दियों के मौसम होता है उससे पहली जो कई बहार होती है, तो उनमें पहले बहार है वो शुरू हो जाती है, तो बहार का विशेष तौर से ध्यान रखें। जिस बहार में ज़्यादा फल हमको मिलते हैं उस बहार को ही हम काम लें। तो अपना जो देखने का तरीका, एक भाई मान लो साल भर में 3 बहार आती हैं, तो एक बहार जो सर्दियों की होती है वो बहुत अच्छी होती है, तो उसी के पौधे हमको काम लेने चाहिए। तो इस तरह से हम बहारों का ध्यान करके कटाई छटाई भी करते रहें। अब बात आती है फलों का, जो तुड़ाई का समय है, तो किसान भाइयों ध्यान रखें कि जैसे ही फल हैं जो पकने शुरू हो जाते हैं, तो अनार के फल थोड़ा सा गुलाबी रंग जैसे ही ले, लाल से गुलाबी सा बने, तो तुरंत तुड़ाई का समय हो जाता है। और दाने हैं उनको हम छील करके देखें, तो दाना है जो सिंदूर रंग का हो जाता है, तो समझ लें कि भाई फल पक गए हैं। तो इस तरह से अनार की हम तुड़ाई भी कर सकते हैं। तो किसान भाई, इस तरह से हम उन्नत अनार की खेती कर सकते हैं और इससे हम अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, देखिए ये तो हुई अनार की उन्नत खेती के बारे में, और अब आपको सुनवाते हैं भेंटवार्ता। भेंटवार्ता है अमरूद के उन्नत बागवानी श्री विकास कुमार सैनी से, कृषि पर्यवेक्षक हैं ये महुआ खुर्द से, तो इनसे भेंट है। तो भाइयों सुनो।
3: बात करते हैं बागवानी, तो बागवानी में अमरूद का जो फल होता है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, और अलवर जिले में अपने जो अलवर के आसपास में अमरूद की बागवानी काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो बागवानी से अपने जो किसान भाई हैं कम भूमि में और कम पानी में ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं सब, और ये देखी जाए तो आजकल समय की आवश्यकता है। तो इसमें जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री विकास कुमार सैनी जी, जो कृषि पर्यवेक्षक महुआ खुर्द पंचायत समिति मालाखेड़ा में लगे हुए हैं, तो इनसे जानकारी लेते हैं आज। नमस्कार जी।
4: नमस्कार जी।
3: देखो विकास जी, ये बताएं कि जो अमरूद की अगर बात कर रहे हैं, तो अमरूद के लिए किस समय तो अपन गड्ढे खोदें और किस समय इसमें अपन जो अच्छी किस्म के पौधे लगा सकते हैं?
4: जी, अमरूद की फसल की अपन बात करें तो बागवानी की दृष्टि से अलवर ज़िले में अमरूद का भी किसानों में प्रचलन बढ़ रहा है, और अभी अमरूद लगाने के इच्छुक हैं। जैसे अपन बात करें अमरूद की फसल में गड्ढों की वही लगाने का कब समय है, तो अमरूद की फसल को किसान भाई 2 बार लगा सकते हैं साल में, फरवरी के महीने में और इसके अलावा जुलाई अगस्त के महीने में भी लगा सकते हैं। मुख्य रूप से अलवर ज़िले में जुलाई अगस्त जो बारिश का टाइम होता है उसी समय किसान भाई लगाते हैं। और तो इस बार अगर कोई किसान भाई बारिश के दिनों में जैसे अगस्त के महीने में जुलाई अगस्त में लगाता है, तो उसके लिए गड्ढे किसान भाइयों को मई जून के महीने में ही तैयार करने पड़ेंगे, 1 से 1.5 महीने पहले।
3: गड्ढे खोदते समय क्या सावधानी रखें और कितनी कितनी दूरी पर गड्ढे खोदें?
4: जी किसान भाइयों, गड्ढे खोदते समय सावधानी तो मुख्य रूप से तो स्पेसिंग की और गड्ढों का साइज जो होता है उसकी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि जो प्रॉपर स्पेसिंग अगर रखेंगे तो हम पौधों को फैलाव का और सभी प्रकार फैलाव का और उत्पादन पर भी ठीक रहता है। तो इसीलिए किसान भाइयों को जो अमरूद की किस्मों में 6.5 मीटर 6.5 × 6.5 6.5 मीटर का पौधे से पौधे और कतार से कतार की दूरी रखनी चाहिए। इसके अलावा जो गड्ढों का साइज है उसमें 50 × 50 सेंटीमीटर का, मतलब गहराई भी गड्ढे की 50 सेंटीमीटर और जो उसकी चौड़ाई होती है वो भी 50 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इस हिसाब से अगर अपन स्पेसिंग रखेंगे तो एक

0: हेक्टेयर में 240 अमरूद के प्लांट लगते हैं
1: और उत्पादन भी अच्छा मिलता है
0: जी।
1: तो विकास जी, अगर अपन बात करें इन अमरूद की जो प्रमुख जो किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन देते हैं उनकी, और एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या ये बीजू पौधे भी तैयार होते हैं इनके?
0: जी, अमरूद के बीजू पौधे किसान अपने स्तर से तैयार नहीं करते हैं। अमरूद में जो पौधे तैयार करने की प्रॉपर जो तरीका होता है वो कटिंग का होता है और लेयरिंग का। इसमें कई प्रकार की कटिंग लगती है जिसमें स्टूल लेयरिंग होती है मुख्य रूप से, जो नर्सरियाँ उस तरीके से पौधे तैयार करती है। इसके अलावा किसान भाई खुद के स्तर पर भी हार्डवुड कटिंग से भी पौधे तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो एयर लेयरिंग होती है उससे भी किसान भाई इसमें पौधे तैयार करके अपने स्तर से लगा सकते हैं
1: जी। और किस्में प्रमुख रूप से कौन कौन सी है इसमें?
0: जी, किस्मों की जैसे अपन बात करें तो जो लाल किस्में होती है उसमें ललित और बनारसी सुर्ख, ये किस्में बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल इनको लगाया भी जा रहा है। लेकिन जो अपने अभी प्रचलन में है किस्में, इसमें इलाहाबादी सफ़ेदा और लखनऊ 49 दोनों किस्में हैं जो सवाई माधोपुर क्षेत्र में बहुतायत में होती थी, लेकिन अभी अलवर ज़िले में भी इनका प्रचलन बढ़ रहा है। दोनों अच्छी किस्में हैं, इनको किसान भाई लगा सकते हैं।
1: तो अगर उपलब्धता की बात करें इन किस्मों की, तो पौधे बाहर से मंगवाने पड़ते हैं या अलवर में उपलब्ध हो जाते हैं?
0: किसान भाई जो अमरूद की फसल लगाने के इच्छुक हैं वो सभी अपने जो उद्यान विभाग का कार्यालय है भवानी तोप अलवर पर सरस डेयरी के सामने, वहाँ जा करके अपनी डिमांड नोट करवा सकते हैं और उनको जो पौधे लगाने का समय होगा उस समय पौधे उपलब्ध हो जाएंगे। इसके अलावा किसान भाई अपने जो नज़दीकी कृषि कार्यालय है, कृषि पर्यवेक्षक या सहायक कृषि अधिकारी से संपर्क करके भी अपनी डिमांड नोट करवा सकते हैं। इससे उनको किसान भाइयों को पौधे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे सरकार द्वारा, और इस पर अनुदान भी दिया जाएगा किसान भाइयों।
1: तो देखो विकास जी, अगर बात करें भूमि की, अपन कैसी मिट्टी होनी चाहिए इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त, और इसमें क्या एक जो प्रोपोगेशन जो क्रिया होती है वो उसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो उसके लिए क्या करें?
0: देखिए, भूमि की जब अपन बात करें अमरूद की, तो अमरूद की फसल बहुत सहनशील होती है, इसको किसी भी प्रकार की भूमि में लगा सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो भूमि 5.5 से 8.5 तक पीएच तक होती है, यानी थोड़ी अगर भूमि लवणीय है तो वो भी चल जाएगी इसमें, उसमें भी अमरूद की फसल को लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपने बात करी प्रोपोगेशन की, तो हमने बताया था कि इसमें लेयरिंग मुख्य रूप से होता है कटिंग, तो किसान भाई अगर अपने स्तर से करना चाहें प्रोपोगेशन तो इसमें लेयरिंग और कटिंग के द्वारा पौधे लगा सकते हैं
1: जी। और इसके जो अपनी जो ट्रेनिंग प्रूनिंग जो आती है इसमें बागवानी में, उसका बहुत जो पुराने पेड़ हो जाते हैं उसमें टहनियाँ सूख जाते हैं या कोई अनावश्यक टहनी को काटना पड़ता है, इसके लिए ट्रेनिंग प्रूनिंग के लिए अपने जो किसान भाई क्या करें और किस औजार से इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहते हैं?
0: किसान भाइयों को अमरूद की जो फसल होती है इसमें जब उसका आकार बड़ा होने लग जाता है तो हर तीसरी शाखा को काट देते हैं, और इसके लिए किसान भाइयों को फरवरी का जो महीना होता है वो उपयुक्त रहता है। इसमें एक तो सूखी रोगग्रस्त जो शाखाएँ उनको हटा देना चाहिए, एक जो नई शाखाएँ जो होती हैं उनको 1 मीटर छोड़ करके और आगे से हटा देते हैं, जिससे क्या है कि उनमें फुटाव बढ़ता है और पुष्पन ज़्यादा होता है और फलन भी ज़्यादा होता है।
1: और इसमें जो अगर कीट बीमारी की अगर बात करें विशेष रूप से, जैसे फल वाले पौधे हैं इनमें कीट का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने मिलता है और बीमारी, तो कीट कौन कौन से कीट और बीमारी इसमें लगते हैं, क्या उनका नियंत्रण है?
0: अमरूद की फसल में मुख्य रूप से जो कीट की बात करें तो फ्रूट फ्लाई जिसको फल मक्खी बोलते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है, जिससे क्या है कि उसमें फल में अंदर कीड़े हो जाते हैं और उसकी वजह से उत्पादन पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके फ्रूट फ्लाई वो सबसे महत्वपूर्ण कीट है। इसमें इसके नियंत्रण के लिए अपन बात करें तो 0.1% साइपरमेथ्रिन नामक दवा आती है या फिर डेल्टामेथ्रिन होती है, दोनों में से कोई भी दवा जो आसानी से उपलब्ध हो जाएगा उसका 0.1% का जब इसमें फलन चालू होता है उसी समय पर छिड़काव किसान भाइयों को करना चाहिए
1: जी। और अगर बीमारी की बात की जाए तो कौन कौन सी बीमारी प्रमुख रूप से इसमें लगने का खतरा है?
0: इसमें बीमारी की जब अपन बात करें तो विल्ट जो बीमारी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण बीमारी होती है, ये जड़ों में लगती है, इसलिए इसके नियंत्रण के लिए जड़ों में 0.1% बावेस्टीन का प्रयोग किया जाता है।
1: तो देखो विकास जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने अमरूद की खेती के लिए दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: राम राम।
2: हाँ, तो देखिए किसान भाइयों, ये तो सुने भेंटवार्ता और अब सुनते हैं ये संदेश।
3: ईएसआईसी हर कदम पर साथ निभाए, सुख हो या संकट की घड़ी, ईएसआईसी साथ है हर घड़ी।
4: 1952 से आज तक ईएसआईसी बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत, लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
3: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा, 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
4: ईएसआईसी 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।
2: किसान भाइयों, अब आपको करवाएं मनोरंजन, सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा लोकगीत।

हाँ तो किसान भाइयों देखो, ये तो सुने आपने लोकगीत सीमा मिश्रा की आवाज़ में नैनारा लोभी। और अब आपको जानकारी दे दें पपीते की उन्नत बागवानी के बारे में। किसान भाइयों, पपीते का फल है वो देखो, एक बहुत ही अच्छा लोकप्रिय फल है। इसको सभी लोग खाना पसंद करते हैं, जिनमें जो मरीज लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुपाच्य फल के रूप में ये माना जाता है। तो इसको हम किसी भी मिट्टी में बो सकते हैं। तो पपीते की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी है वो बहुत ही अच्छी होती है, जिसका पीएच मान 7 के आसपास हो तथा जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। अब बात करते हैं किस्मों का चुनाव। किसान भाइयों, विभिन्न कृषि शोध संस्थानों द्वारा अलग अलग प्रदेशों के लिए सारी बहुत सारी जो उन्नत किस्में हैं उनका विकास किया गया, जिनमें प्रमुख रूप से पूसा डेल्सियस है, पूसा नन्ना है, पूसा डवार्फ है, पूसा मैजेस्टी है, पंत पपीता 3 है, कुरग हनी ड्यू है और वाशिंगटन है। बीज की मात्रा की अपन बात करते हैं तो किसान भाइयों, पपीते के 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए उत्तम किस्म का जो बीज है वो लगभग 250 ग्राम बीज पर्याप्त तो माना जाता है। बीज की बुआई का जो समय की अपन बात करें तो देखिए, ये यानी कि जो आषाढ़ की अपन बुआई करते हैं तो उस समय भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं और इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा बुआई के लिए हम अगस्त का महीना या सितंबर महीना है वो भी बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो इस महीने भी हम इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों देखिए, इसकी जो पौध का रोपण की अपन जब बात करते हैं, तो जैसे ही गर्मियों के दिनों में खेतों में 2 से 2x2 मीटर की यानी कि ये समय में 2 से 2 मीटर की दूरी पर गड्ढे खोदकर उनमें 20 किलोग्राम कंपोस्ट, 1 किलोग्राम नीम का जो करंज यानी खड़ है वो डाल दें, और इसके अलावा 1 किलोग्राम इसमें कई तरह के जो उर्वरक हैं वो मिलाएं, जिसमें फास्फोस है, पोटास है, इस तरह से। तो उनको हम गड्ढों को 1 महीने मिट्टी सुखा करके भर सकते हैं। जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है तो हमारे पौधे हैं वो रोपने के लिए हम पौधशाला यानी कि नर्सरी से उखाड़ करके हम रोपना शुरू कर दें और उनमें हल्की सी सिंचाई कर दें। कई बार किसान भाई थोड़ा सा ये करते हैं कि भाई उनको बहुत ज़्यादा पानी भर देते हैं, उसके कारण उसके पौधे हैं जो गिर जाते हैं। तो पौधे हैं जो सीधे खड़े रहने चाहिए। खाद व उर्वरकों का उर्वरक हैं उनका हम किस तरह से उपयोग करें, इसके लिए पपीते की अच्छी खेती के लिए 240 ग्राम नाइट्रोजन, 500 ग्राम फास्फोरस तथा 500 ग्राम पोटास प्रति पौधा प्रतिवर्ष देने से अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसको 4 भागों में विभक्त करके जुलाई से अक्टूबर तक प्रत्येक माह में हमको दे देनी चाहिए। किसान भाइयों, समय समय पर हम जैसे ही पौधों में खाद और उर्वरक देते रहेंगे तो देखो पौधे हैं वो बहुत ही अच्छे विकास करेंगे। सिंचाई की अपन बात करते हैं तो सिंचाई में हम आवश्यकता अनुसार ध्यान रखें कि भाई जैसे ही भूमि है ऊपर से टाइट हो जाए या फिर पौधे के जो पत्ते हैं जो कुमलाना शुरू कर दें यानी कि पौधे नीचे लटकें, तो हमको पता लग जाना चाहिए कि भाई सिंचाई ज़रूरी है। तो भूमि का प्रकार, जलवायु या के ऊपर जो सिंचाई है वो आधारित होती है। पौधे में अपने यहाँ पर परागण की समस्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो पपीते के खेत में कुछ नर पौधे भी लगाएं, जिससे कि भाई किसान जो परागण की क्रिया के कारण जो पौधे हैं जो कम उत्पादन देते हैं, तो हमको जो नर पौधे हैं वो ज़रूर लगाना चाहिए। कई बार किसान भाई ये सोचते हैं कि भाई ये पौधे हैं ये फल नहीं दे रहे थे, उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं, ये हम बहुत बड़ी गलती कर

करते हैं तो ये नर पौधे ही मादा पौधों को परागण उपलब्ध कराते हैं, तो फल बनने में ये बहुत ही जरूर होते हैं। फलों की तुड़ाई के लिए किसान भाई ध्यान दें कि जब फल तथा फल के गूदे का रंग हल्का सा पीला होने लगे तो हमको देख लेना चाहिए कि भाई हमारे पौधे हैं वो फल हैं वो पकने शुरू हो गए, तो इस समय हमको फल तोड़ लेना चाहिए। तो किसान भाई ये तो हुई जानकारी, और अब चौपाल का समय हो रहा है पूरा। दीजिए इजाज़त, जय जवान जय किसान।

0: फिल्म थी भूमिका और आप सुन रहे थे प्रीति सागर को।
1: ESIC हर कदम पर साथ निभाए, सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
2: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी, हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
1: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
2: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म थी अभिलाषा।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को भी आप सुन रहे थे। फिल्म थी अभिनेत्री और इसी के साथ हमारा ये फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। लोक संगीत में

0: जो मेहनत से देश सजाए। ईएसआईसी हर कदम पर साथ निभाए, सुख हो या संकट की घड़ी, ईएसआईसी साथ है हर घड़ी।
1: 1952 से आज तक ईएसआईसी बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी। हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
0: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
1: ईएसआईसी 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: जो मेहनत से देश सजाए, ESIC हर कदम पर साथ निभाए। सुख हो या संकट की घड़ी, ESIC साथ है हर घड़ी।
3: 1952 से आज तक ESIC बना है भारत के मेहनत कशों की सबसे बड़ी ताकत। लगभग 4 करोड़ बीमित श्रमिक और 15 करोड़ लाभार्थी। हर राज्य हर परिवार के साथ कैशलेस इलाज, बीमारी में मिले वेतन का सहारा, मातृत्व से लेकर बेरोजगारी तक पूरी सुरक्षा।
2: अब नए श्रम कानूनों के साथ हर कामगार को मिले आसान, मजबूत और आधुनिक सुरक्षा का भरोसा। 165 से ज्यादा अस्पताल, आसान ऑनलाइन सेवाएं और भरोसे की परंपरा।
3: ESIC 75 वर्षों से हर दिन हर श्रमिक के साथ।

लोक संगीत में अभी आप सुन रहे थे सीमा मिश्रा और साथियों के गाए लोक गीत। आकाशवाणी अलवर का ये सरिस्का चैनल है एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित चार स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में। और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाड़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएचएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर यह तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वह एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। लैब्स कई राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब वहाँ उन राज्यों में हो, इस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन हो गया। डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया

बताया कि अगले सप्ताह अमेरिका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रह रहे सभी अवैध नागरिकों उनके अनुसार प्रसारित किए जा रहे हैं।

है स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो हुई जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया, हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को शिकार नहीं होना चाहते थे, हम बच्चों की मानसिक स्थिति को।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने

भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से

0: सी ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट अकादमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुँचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
1: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतरबैंकी विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

यही बहाना न जाने देगा आज तुमको ये दीवाना।

0: जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुकेश की आवाज में मेरा नाम जोकर फिल्म का गाना, गीत शैलेंद्र का है, संगीत शंकर जयकिशन का।

इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

ये है विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखो ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार, तो बस

0: सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में पल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

दोस्तों, ये गाना फिल्म जलवा का है, जिसमें पंकज कपूर ने अल्बर्ट पिंटो की भूमिका निभाई थी। याद होगा आपको 1987 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। जी हाँ, पंकज कपूर है आज के फनकार।

0: आइए पंकज कपूर की अभिनय यात्रा के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: देखिए मैंने प्री इंजीनियरिंग किया है जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने से पहले का मकाम होता है। हाँ, उसमें मैंने कॉलेज को टॉप जरूर किया था लेकिन काफी मेहनत और काफी अरसे के बाद। और शौक लेकिन हमेशा से मुझे एक्टिंग का रहा था, तो मेरे पिता कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने मेरा साथ दिया और कहा कि तुम जो करना चाहते हो जिंदगी में करो। तो फिल्म इंस्टीट्यूट में और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अप्लाई किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में उन्होंने ही पता किया था, फिल्म इंस्टीट्यूट वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने सिलेक्ट कर लिया था। और इस तरह से मेरी तालीम वहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में शुरू हुई और 3 साल की तालीम हासिल करने के बाद मैं एक प्रोफेशनल एक्टर बन गया और उसके बाद का मेरा सफर थिएटर और टेलीविजन और सिनेमा का शुरू हुआ।

एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सन 1976 में पंकज कपूर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद वो रंगमंच की गंभीर दुनिया में समा गए। दरअसल फिल्मों से पहले उनकी पहली प्राथमिकता रंगमंच। 1982 में रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में काम करने का मौका उन्हें मिला। भूमिका छोटी थी, लेकिन इस फिल्म के हिंदी वर्जन के लिए गांधी की यानी बेन किंग्सले की आवाज बने थे पंकज कपूर।

राष्ट्र नाट्य विद्यालय की एक रेपर्टरी कंपनी है, वहां पे बतौर अभिनेता एम्प्लॉयड था। जिस वक्त गांधी फिल्म के बनने का सिलसिला हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो रिचर्ड एटनबरा जो उसके डायरेक्टर थे, वो हमारे रेपर्टरी कंपनी के नाटक देखने के लिए आए, और उन्होंने नाटक देखने के बाद एक रोल के लिए मुझे चुना अपनी फिल्म में। रोल तो बहुत छोटा सा था, गांधी जी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल। फिल्म में प्रेजेंस थी ज्यादा, परफॉर्मेंस को बहुत खास नहीं था, लेकिन उस फिल्म के जरिए जो मौका मुझे मिला, वो मौका था गांधी के रोल की डबिंग करने का। हिंदी में जो गांधी की डबिंग की गई है बेन किंग्सले के रोल की, वो मैंने की थी उस वक्त। तो वो बड़ा चैलेंजिंग काम था, क्योंकि अंग्रेजी जबान से हिंदी जबान में आप डब करेंगे उसको, और सिंक भी परफेक्ट होना चाहिए।

और 22-21 साल की उम्र से लेकर करीबन 78-77 साल की उम्र तक के गांधी जी को आवाज के जरिए दर्शाना सिनेमा में, वो एक चैलेंजिंग काम जरूर था जो मुझे मिला। तो ये मेरा पहला मौका था या पहला चांस था फिल्मों के अंदर दाखिल होने का। हालांकि इस काम को करने की वजह से मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपर्टरी कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया।

पंकज कपूर ने तमाम नाटकों में विभिन्न भूमिकाएं अदा की। फिल्म मकबूल में काम करने के लिए पंकज को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला था। 2003 में रिलीज फिल्म मकबूल में पंकज कपूर ने जहांगीर खान अब्बाजी का मकबूल किरदार अदा किया था। फिल्म थी विशाल भारद्वाज की, याद होगा आपको।

0: छोटे पर्दे के लिए भी कुछ यादगार भूमिकाएं पंकज ने निभाई हैं। 1985 से टीवी पर करमचंद की शीर्षक भूमिका में वो बेहद लोकप्रिय हुए थे। उनका मैनरिज्म इस कदर प्रसिद्ध हुआ था कि बच्चे बच्चे की जुबान पर करमचंद का नाम था और उनके कैरेक्टर की नकल वो खेल कूद में भी किया करते थे।
1: अभिनय में ये बात बड़ी जरूरी है कि आप कितना भी डूब गए हों अपने किरदार में, एक धागा या एक थ्रेड जिसको कहते हैं, ऐसा हमेशा रहना चाहिए जिसमें आपको इस बात का एहसास रहे कि आप वो किरदार नहीं है, आप हैं तो पंकज कपूर ही, लेकिन आप उस किरदार को निभा रहे हैं। निभाते हुए जब आप उसको निभा रहे हैं उस वक्त लोगों को ये ना लगे कि आप पंकज कपूर हैं, तो वो एक हल्का सा धागा जो है आपके और आपके कैरेक्टर के दरमियान बना रहता है और वो बनाए रखना जरूरी है। अगर ना रहे तो या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा या फिर आप इतने उसमें डूब जाएंगे कि उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा, और वो भी स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि कर तो आप अभिनय ही रहे हैं ना।

0: जो गाने हम आपको पंकज कपूर अभिनीत फिल्मों से सुनवा रहे हैं, वो गाने उन पर फिल्माए तो नहीं गए हैं, लेकिन इनके जरिए हम पंकज कपूर के बेहतरीन अभिनय की याद तो ताजा कर ही सकते हैं। सुधांशु और सुधीर मिश्रा के धारावाहिक कब तक पुकारू में पंकज कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की थी। ये धारावाहिक रांगे राघव के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित था। सुखराम की जटिल भूमिका को पंकज कपूर ने बड़ी कुशलता और बड़ी सरलता से निभाया था। इसी तरह डॉक्टर राही मासूम रजा की कृति नीम का पेड़ पर आधारित टीवी सीरियल में बेहद चुनौतीपूर्ण भूमिका अदा की थी पंकज कपूर ने। इन दोनों किरदारों को पंकज बेहद चैलेंजिंग मानते हैं।
1: बड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि एक तो अवधि मुझे बोलनी नहीं आती है और अवधि में वो काम करना था, और दूसरा एक ऐसे आदमी का किरदार था जो बेगार है, और ये आज भी जिसको बॉन्डेड लेबर कहेंगे हम आज के ज़माने में, आज भी लोग हैं, लेकिन वो कहानी चूँकि 40s की थी तो उस ज़माने के दौर के अंदर उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी समझ, उसका अपना बिहेवियर, उसकी अपनी एम्बिशंस और ये सब चीज़ें दर्शाने में बड़ा ही एक अलग किस्म का लुत्फ महसूस हुआ। और एक और टेलीफिल्म मैंने की थी जो भी बहुत कम लोगों ने देखी है, उसको केतन मेहता साहब ने डायरेक्ट किया था, किसी एक फूल का नाम लो। उसमें पाठक नाम का एक राइटर है, वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टराइजेशन है और एक इंटरेस्टिंग स्टडी है किसी एक इंसान की। तो ये कुछ रोल हैं जिनको करने में बड़ा मजा आया।
0: 1991 में तपन सिन्हा की फिल्म एक डॉक्टर की मौत में भी कमाल किया था पंकज कपूर ने। भूमिका थी डॉक्टर दीपांकर रॉय की।
1: तपन सिन्हा साहब जो डायरेक्टर थे डॉक्टर की मौत के, उन्होंने राख फिल्म ही देखी थी और उसी को देखने के बाद उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए रोल ऑफर किया। अब तपन सिन्हा साहब तो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े जाने माने, बहुत सी फिल्में, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बंगाल में, बंगाली में बना चुके हैं, और लेकिन मेरा इसरार हमेशा से जैसे कि स्क्रिप्ट पे रहता है, तो स्क्रिप्ट मुझे उन्होंने मुहैया करवाया। मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे रोल बहुत अच्छा लगा और मैंने उनसे कहा कि मैं करना चाहूँगा, तो ऐसे उस फिल्म में दाखिला हुआ मेरा। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि शबाना इसमें दूसरा रोल कर रही हैं, फीमेल कैरेक्टर कर रही हैं, और करीबन 40-45 दिन की शूटिंग थी हमारी बंगाल में। ज़्यादातर काम कलकत्ते में था और कुछ चांदीपुर में, कुछ दिनों का आउटडोर था। तो शबाना बहुत प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं और उनके साथ बड़ी ही अच्छी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हमारी रही, और तपंदा बहुत ही अच्छे इंसान हैं और ऐसे निर्देशक हैं जो अपने अभिनेता को बहुत सी छूट देते हैं और ऐसा माहौल बनाते हैं उसके लिए जिसमें वो अच्छा अभिनय कर सके। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें भी इस फिल्म के अंदर थी जिसको लेकर के कुछ डॉक्टर्स थे वहाँ कलकत्ते के लोकल, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की और हमें उसके बारे में पूरा नॉलेज वगैरह दिया गया, जो कि इस किरदार को निभाने के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी था।
0: थिएटर के दौरान पंकज ने नाटक एक रुका हुआ फैसला में बेहतरीन काम किया था। आगे चलकर इसी नाटक पर आधारित एक फिल्म भी बनी थी।
1: उससे पहले हमने एक नाटक किया था एक रुका हुआ फैसला नाम से, तो उसके जो डायरेक्टर थे और मेरे मित्र भी थे जिनके साथ मैंने सबसे ज्यादा काम थिएटर में किया है, रंजीत कपूर साहब, वही इस फिल्म को लिख रहे थे। तो जब कास्टिंग की बात आई तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, और दरअसल मैं फिल्म में ओरिजिनली जो रोल ओमपुरी साहब ने किया है अहूजा का, वो करने वाला था, लेकिन बाद में तनेजा का रोल जो कर रहे थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया, या तो इन लोगों ने बतौर दोस्त मुझसे कहा कि भाई इसकी बजाय अगर तुम ये रोल ले लो तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि मुझे तो अभिनय करना था। तो इस तरह से ये फिल्म मेरे हाथ लगी। उस फिल्म का एक किस्सा जरूर मैं आप बताना चाहूंगा। उसमें एक सीन है जिसमें बिल्डर और कमिश्नर और ये सब लोग एक खुली लिफ्ट में ऊपर बिल्डिंग में जा रहे हैं, और उस वो बड़ी खतरनाक किस्म की लिफ्ट थी क्योंकि एक सिर्फ एक तार से टंगी हुई थी। और तो शूटिंग खत्म हो जाने के बाद अगली शूटिंग हमारी कुछ 20वें माले पे थी, तो वहीं जो बिल्डर साहब के बेटे थे उन्होंने कहा कि इसी लिफ्ट में लद के ऊपर चले चलते हैं और ये लिफ्ट ऊपर लैंड कर जाएगी लैंडिंग पे, वहां से आप उतर के फिर नीचे 2 फ्लोर उतर के चले जाइएगा। तो करीबन 20 लोग उस

0: के अंदर चढ़ गए मेरे मना करने के बावजूद। लेकिन उसने कहा कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना वेट तो चली जाता है। और फिर जब लिफ्ट पांचवें छठे माले तक ऊपर गई तो जाके वहां हवा में अटक गई और हम सब लोग 20 के 20 लोग हवा में लटक रहे थे। और ये बिल्डर साहब का बेटा भी हमारे साथ था। जब वो लिफ्ट वाले से कहता था कि भाई इसको ऊपर लो तो लिफ्ट वाला बाएं देखने लगता था, जब उससे कहता था नीचे लो तो दाएं देखने लगता था। फिर कुछ देर वहां लटकने के बाद उन्होंने कहा कि भाई इसको किसी तरह से बिल्डिंग के पास ले लो। तो जब बिल्डिंग के पास लिया गया तो मैंने सबसे रिक्वेस्ट की कि भाई कोई भगदड़ ना मचाए और एक एक करके आराम आराम से उतरे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सबने भगदड़ मचाई। और ये ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि किसी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई मरा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग और उस लिफ्ट के दरमियान करीबन 1 फुट का फासला था। जब हम उतर के ऊपर लिफ्ट वाले के पास पहुंचे और पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि तार कट रहा था, आधे से ज्यादा तार कट चुका था। अगर वो ऊपर की तरफ खींचता तो भी टूट जाती लिफ्ट, अगर वो नीचे की तरफ फेंक जाने देता हमें तब भी लिफ्ट टूट जाती और हम सब लोग मर जाते। तो ये एक हादसा उस फिल्म का जरूर मुझे याद है, जो जिंदगी भर याद रहे।
1: 1989 में फिल्म राख में काम करने के लिए भी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था पंकज कपूर को। याद होगा इस फिल्म में पंकज के साथ आमिर खान ने भी काम किया था। उनके कुछ चर्चित धारावाहिक हैं ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के, दुनिया वगैरह वगैरह। इससे पहले उन्होंने फटीचर, मोहनदास BA LLB, वाह भाई वाह, साहब जी, बीवी जी और गुलाम जी में अभिनय किया था और काफी कामयाबी हासिल की थी। गुलजार द्वारा मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के टीवी रूपांतरण में होरी की एक यादगार भूमिका भी पंकज कपूर ने टीवी पर अदा की थी, आपने जरूर देखा होगा।

सन 2005 में रिलीज हुई थी फिल्म 10, आपने जरूर देखी होगी और आपको याद होगा शानदार किरदार पंकज कपूर का फिल्म 10 में। दोस्तों सन 2007 में पंकज कपूर की 3 फिल्में आपने जरूर देखी होंगी, धर्म, डब्लू अम्ब्रेला और हल्ला बोल में भी पंकज नजर आए थे। एक फिल्म बनी थी सन 2011 में जो ऑफिस ऑफिस सीरियल का ही एक प्रतिरूप थी और इसका नाम था चला मुसद्दी ऑफिस ऑफिस। ये तो आप जानते ही हैं कि जाने माने स्टार शाहिद कपूर के पिता हैं अभिनेता पंकज कपूर, जो निर्देशन में भी अपना कदम जमा चुके हैं। शाहिद को उन्होंने निर्देशित किया फिल्म

दोस्तों, फिल्मकार विशाल भारद्वाज की मशहूर फिल्म मटरू की बिजली का मंडोला में भी आपने पंकज कपूर के अभिनय का जलवा जरूर देखा होगा।

0: तो ये था प्रोग्राम आज के फनकार, केंद्रित था जाने माने एक्टर पंकज कपूर पर। इस कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब अपने दोस्त राजेंद्र को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से सफर छाया गीत का कुछ ही पलों के इंतजार के बाद

नया गीत के सफर में आज बातें अफसानों की। ये वो मोहब्बत के अफसाने हैं जिनमें कभी सुकून मिलता है तो कभी मिलती है तड़प, कभी मिलन है तो कभी जुदाई। कभी ये अफसाने खुशी के गीत बनकर झूमने लगते हैं तो कभी देते हैं दर्द की पुकार। पर जो भी है, हर दिल का एक अफसाना होता है, या यूं कहें कि हर दिल एक अफसाना लिखता है अपनी मोहब्बत का, अपनी चाहत का, जिसे कभी दिल खुद तो कभी पूरी की पूरी दुनिया गुनगुनाती है।

हम चल रहे थे राह जिंदगी पर अकेले और खामोश। तुम क्या मिले राह बनकर कि जिंदगी को एक नया अफसाना मिल गया। इस अफसाने में है दीवानगी, इसमें है दरिया की रवानगी। कोरे कागज जैसी जिंदगी पर जो अफसाना तूने लिख डाला, अब उसे ही तो ताउम्र पढ़ते जाना है हमें।

हमारे सामने आते ही शब्द खो से जाते हैं, जुबा रुक सी जाते हैं कहीं। जब तुम ही बसे हो इन निगाहों में, तो क्यों ना इन नजरों से ही मोहब्बत का अफसाना लिखा जाए। चाहत की दास्तां आखिर क्यों सुने कोई और, ये राज़े मोहब्बत तो बस दो दिलों के दरमियां ही महफूज रहे।

नजर में कह दिया, नजर में कह दिया अफसाना मेरे प्यार का, हमेशा आँख में दिल रहता है दिलदार का। नजर में कह दिया, नजर में कह दिया अफसाना मेरे प्यार का।

जिंदगी की राहों पर साथ चलते हुए बढ़ता जाता है मोहब्बत का अफसाना। इस अफसाने में कभी मौसम और कभी महकती रातों की बातें, तो कभी बिखरी जुल्फों और काले घटाओं की बातें होती है। यही अफसाना कभी गलियों का दिल बनकर धड़कता है, तो कभी क्षमा पर परवाने की प्रीत झूमने लगती है, गाने लगती है।

हमेशा आंख में दिल रहता है दिलदार का। नजर ने कह दिया, नजर ने कह दिया अफसाना मेरे प्यार का। हमेशा आंख

मोहब्बत के अफसाने में बस प्यार की ही बातें हो, ऐसा तो नहीं होता। इन अफसानों में तो झगड़े भी होते ही रहते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर बार नायिका ही रूठे और नायक उसे मनाए। कई अफसाने तो ऐसे भी बने हैं जिसमें नायिका ही अपने नायक को मनाने में लगी है। पर जो भी हो, हर अफसाने के अंजाम में सारी शिकायतें दूर हो ही जाती है, और तब दिल गा उठता है कोई प्यार भरा गीत।

अफसाना आज का नहीं है दोस्तों, ये अफसाना बहुत पुराना है। इस अफसाने में है बचपन की शरारतें, इसमें है बचपन की दोस्ती जिस पर आगे चलकर मोहब्बत का रंग चढ़ा। बिना बात के वो रोटना, वो मनाना, वो साथ साथ कविताएं पढ़ना, सावन के वो झूले, गर्मी की वो रातें, और हम अपनी छत से करते थे एक दूसरे को इशारे। इन हंसी

ही दिल लिखता तो चला जाता है जिंदगी के अफसाने, पर ये काम इतना आसान कहाँ। अफसाने के किरदार ही इसे रातों को जगाते हैं। इन तमाम अफसानों में एक है मोहब्बत का अफसाना, जिसके होते हुए जमाने का कोई भी अफसाना भला कौन पढ़ना चाहेगा। और इन किरदारों में है एक ऐसा चेहरा जो हम सफर है इस अफसाने का। जब साथ हो इसका तो भला दुनिया से क्यों डरा जाए। जिंदगी की टेढ़ी मेढ़ी राहों से गुजर कर अपनी मंजिल पा ही लेता है मोहब्बत का ये प्यारा सा अफसाना, जो धड़कता है हर दिल में।

अफसानों की ये बातें आप सुन रहे थे छाया गीत के सफर में, अपनी हम सफर ज्योति के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो।
3: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
4: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
3: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
5: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
3: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
5: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
3: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BHF की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BHF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और

0: आयुक्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी डीटीसी की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। FM बैंड 103.1 MHz पर रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सवेरे 5:55 पर आपसे पूरा भेंट